FM 101 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी भद्रवा से आपसे मुखातिब हैं। समीन, आज शनिवार है, शक संवत 1948 के बैसाख महीने की 19 तारीख, बामुताबिक 9 मई 2026 ईस्वी। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक सुबह के 7:57 हुए हैं। अब हमारी आज की मजलिस का आगाज होता है।

हम आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब हैं एफएम 101 मेगाहर्ट्ज पर। समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज और 8:30 पर उर्दू खबरनामा रिले किया जाएगा। रिले का इंतजार कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले दो दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
1: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देश भर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीपन दासगुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
2: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
2: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी

0: जी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित

0: प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य हुर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। सुवेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की

0: तजर्बा किया। इन खबरों को रोजनामा प्रताप ने पहले सफ़े पर जगह दी है। भारत और सिंगापुर इन सीधादी दहशतगर्दी और सरहद पार जरायम पर मुश्तरक वर्किंग ग्रुप के पांचवें इजलास में दहशतगर्दी और सरहद पार जरायम के लिए ताउन बढ़ाने पर मुत्तफिक। ब्रिक्स की सदारत के दौरान भारत एमएसएमईज ताउन को फरोग देने की तैयारी में। इन खबरों को रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने खसूसी तौर पर शाया किया है।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरतहाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल एन एस राजा सुब्रमण्यम को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरला में जनूबी अंदरूनी कर्नाटक तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी भद्रवाह एफएम 101 मेगाहर्ट्ज पर समय 8:45 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम सुबह खैर। पेशकश है राजा रैपर जमाल की।

0: आदाब सामीन, आकाशवाणी के भद्रवा मरकज़ से आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुबह खैर का ताज़ा शुमारा लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपका मेज़बान राजा रहबर जमाल। और आज के इस मालूमाती प्रोग्राम में हम बात करेंगे महकमा समाजी बहबूद यानी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के बारे में। ये वो स्कीमें हैं जो माशरे के कमज़ोर, ज़रूरतमंद, बुज़ुर्ग शहरियों, ख़वातीन, बच्चों, माजूर अफराद और माशी तौर पर पसमानदा तबकात को सहारा देने के लिए चलाई जा रही हैं। अक्सर लोग इन स्कीमों के बारे में मुकम्मल मालूमात ना होने की वजह से फ़ायदा नहीं उठा पाते। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आप तक आसान जुबान में वो तमाम अहम जानकारियां पहुंचाएं जो आप या आपके आसपास के लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। सामी, महकमा समाजी बहबूद की जानिब से कई अहम स्कीमें चलाई जा रही हैं जिनमें बुज़ुर्गों के लिए सोशल सिक्योरिटी पेंशन, बेवा ख़वातीन के लिए इमदादी स्कीमें, माजूर अफराद के लिए माली मावनत, बच्चों के तहफ़ुज़ के प्रोग्राम और ख़वातीन व बच्चों की फलाह व बहबूद से मुतालिक मुख्तलिफ इकदामात शामिल हैं। इसी मौजू पर मज़ीद तफसील जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़िला डोडा के डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जनाब ज़ुबैर अहमद साहब। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। ज़ुबैर साहब, सबसे पहले आपका प्रोग्राम सुबह खैर में खैर मकदम है। सबसे पहले हमारे सामीन को ये बताइए, महकमा समाजी बहबूद बुनियादी तौर पर किन तबकात के लिए काम करता है और इस वक्त ज़िला डोडा में कौन कौन सी अहम स्कीमें जारी हैं?
1: जैसा कि आपको बखूबी इल्म इस चीज़ का होगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जो डोडा में है, जो डिफरेंट स्कीम्स इंप्लीमेंट करता है, तो इसमें जो हमारी जो प्राइम स्कीम्स है, जैसे पेंशन की स्कीम है, जो हम बुज़ुर्गों को, विधवाओं को और को जो हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं या पर्सन है, उनको हम पेंशन फराहम करते हैं। उसके बाद जो मेन स्कीम दूसरी है वो है हमारी मैरिज असिस्टेंस स्कीम, जो हमारी जो बच्चियां होती हैं जिनको हम शादी के लिए पैसा देते हैं, जो AAY में जिनको 75,000 रुपये मिलता है और जो PHH कैटेगरी में आती हैं उनको हम 50,000 रुपये देते हैं। उनको महीना पहले अप्लाई करना पड़ता है, जनसुगम हमारा पोर्टल है, तो उनको ये जो असिस्टेंस है शादी से पहले मिलता है। इसी तरह से हमारे स्कॉलरशिप जो स्कीम है, जो SC बच्चे हैं, OBC बच्चे हैं, हैंडीकेप बच्चे जो हमारे हैं, इनको हम प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप SC OBC फराहम करते हैं। इसी तरह से जो हमारी जो SC शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो हमारी एक स्कीम है, एट्रोसिटीज एक्ट, जो इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर किसी SC या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब ऐसा कोई भी छेड़खानी हो तो वो इस एक्ट के तहत उसको हम डील करते हैं। इसी तरह से जो हमारे जो ये स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, इनके लिए हमारी जो एक स्कीम है जो है मोटराइज ट्राईसाइकल्स, हम इनको फराहम करते हैं, जिसमें 40% उनकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए और एज 18 से लेकर 50 ईयर्स तक जो मोटराइज

0: ट्राईसाइकिल हम उनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी जो रोजमर्रा जो जिंदगी है, या कोई बिजनेस होल्ड करे करता है तो उनको वो टू एंड फ्रो मूवमेंट के लिए आसानी होती है। इसके अलावा जो हमारे जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनके लिए हम स्पेशल कैंप्स लगाते हैं, जहाँ पे उनकी असेसमेंट होती है और उसके बाद उनको कोई भी चीज जैसे व्हील चेयर है, हियरिंग एड है, वॉकिंग स्टिक, क्रचेज है, तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें फराहम की जाती है। इसी तरह से हमारे पास ऐसे DCPO डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर, हमारे पास यहाँ पे दो CCIs है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट, एक पलाश है जो बॉयज के लिए ऑर्फन्स के लिए है, और एक परीक्षा है जो बच्चों के लिए है। यहाँ पर हम अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स तक जो भी ऑर्फन्स हमारे पास चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होते हैं उनको रखा जाता है, तो वहाँ पे उनके पास उनको सारी वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। सिमिलरली एज ए DCPO हम एक स्पॉन्सरशिप स्कीम हमारी है, जिसमें हमारे पास जो दो बच्चे होते हैं जो भी ऑर्फन्स हो, चाहे सिंगल पेरेंट ऑर्फन हो या डबल पेरेंट ऑर्फन हो, तो उनको स्पॉन्सरशिप एट द रेट ऑफ 4,000 पर मंथ अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स तक हम प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जो है वो PMAJY प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना स्पेशल असिस्टेंस स्कीम जो है स्पेशल फॉर SC विलेजेस के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, साथ साथ में हमारा जो डिपार्टमेंट है ये एम्पावरमेंट स्कीम जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज आप देखो आनंद एलजी साहब की 100 डेज स्पेशल कंपेन अंडर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत शुरू किया है। तो आपके माध्यम से मैं सब लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो है वबा जो फैली गई है हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, इससे हमने अपने जो यूथ को उसको बचाना है, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको हमने जो हमारे पास यहाँ एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर डोडा में है वहां तक ये हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। आपसे भी रिक्वेस्ट की जाती है कि इसके जो हमारा एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर एट GMC डोडा में है वहां तक ये जो बच्चे गलती से इसमें इन्वॉल्व हुए, ताकि वहां तक हम उनको पहुंचाए और उनका ट्रीटमेंट हो और वो भी एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। और इसी के साथ साथ में अगर कोई पेडलर है जो ये चीजें करता है बच्चे मतलब बच्चों यूथ को इन्वॉल्व करता है, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हम चाहे पुलिस को या हमारे डिपार्टमेंट को दी जाए, ताकि ये सारी जो आइडेंटिटी ये कंसील रहती है, ताकि हम ये जो है जो नशा मुक्ति इस टाइम जो ये एक वबा फैल गई है जो पूरे यूथ को इन्वॉल्व करके इससे हम दूर रहें। तो साथ साथ में हम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट जो है जो हमारे ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको भी पेंशन दी जाती है, और बाकी सारी वेलफेयर जो स्कीम्स हैं उनके लिए भी है।
1: जुबेर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि कैसे लोग जो हैं इनको अवेल करें, इनका बेनिफिट
0: देखिए
1: उठाएं।
0: जी, जैसे आपने पूछा कि किस तरह से जितनी भी मैंने स्कीम्स बताई कि इनका बेनिफिट जो हो किस तरह से अवेल करें, तो जो हमारी पेंशन आज सारी स्कीम जो है वो हमारी ऑनलाइन, वो को भी आपको इस चीज़ का इलम होगा। तो जैसे किसी भी एप्लीकेंट को पेंशन के लिए अप्लाई करना है, तो उसने उसके डोर स्टेप पे कहीं साइबर सेंटर हो जो जो CSC सेंटर्स हमारे होते हैं, या अपने मोबाइल से, आज तो मैक्सिमम लोगों के पास ये एंड्रॉयड फोन्स होते हैं, तो हमारी जो साइट है जनसुगम, जनसुगम पोर्टल पे उन्होंने अप्लाई करना है। वहां पे जाके सबसे पहले अपनी ID क्रिएट करनी है, रजिस्ट्रेशन करनी है, और वहीं से उन्होंने अपनी पेंशन स्कीम जो है वो अप्लाई करनी है, जिसके लिए उनके लिए आधार कार्ड, अकाउंट की कॉपी, राशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एज सर्टिफिकेट, और एक एफिडेविट जुडिशियल मजिस्ट्रेट और ओब्लिक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से उन्होंने लेके वहां पे वो अप्लाई कर सके। तो जो पेंशन स्कीम, जैसे हमारे पास 3 पेंशन स्कीम है, ओल्ड एज, विडो और स्पेशली एबल्ड के लिए। जो ओल्ड एज और विडो है ये सिर्फ हमारे पास जो हमारे AY और PHH राशन कार्ड होल्डर से उनको मिलती है, NPHH जो राशन कार्ड होल्डर्स है उनको ये जो ओल्ड एज और विडो पेंशन स्कीम नहीं मिलती है। हाउएवर जो हमारे जो ट्रांसजेंडर्स और जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है वो तीनों कैटेगरी जो राशन कार्ड होल्डर्स है वो एलिजिबल है उसमें, चाहे वो NPHH भी हो, AY और PHH भी। तो ये तीनों जो कैटेगरी फिजिकली एबल्ड पर्सन और ट्रांसजेंडर्स के लिए अवेलेबल है, तो ये अपने घर से या कहीं CSC सेंटर से नजदीकी सेंटर सेंटर के जाके वहां पे वो अप्लाई कर सकते हैं, और उनको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं। इसी तरह से हमारा जो स्कॉलरशिप है सेम है, ऑनलाइन है, बच्चा अपने स्कूल से, अगर स्कूल से नहीं तो अपने मोबाइल या साइबर कैफे से अप्लाई कर सकता है। जो भी स्कीम आज हमारी है तो ये ऑनलाइन अवेलेबल है, और जो हमारा जो मेन जो पोर्टल है जनसुगम पोर्टल पे जाके उन

0: उन्हें अप्लाई करना है, तो उसके बाद ये एप्लीकेशन आईडी जो है हमारे पास, जो हमारे तहसील ऑफिसर और वहाँ से फॉरवर्ड होकर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आती है फॉर सेंक्शन के लिए। तो अगर कोई भी एप्लीकेंट जो भी पेंशन अप्लाई आज करता है, तो विद इन 24 आवर्स हम उसको वो सेंक्शन प्रोवाइड करते हैं।
1: सर, ओल्ड एज पेंशन की बात करें तो ओल्ड एज पेंशन में कुछ कैटेगरीज रखी गई हैं, क्या कैटेगरीज हैं वो और कैसे जो है उनको उसका बेनिफिट होता है, क्या एज होती है जहां से ये स्टार्ट होती है और कहां तक ये जाती है?
0: ओल्ड एज कैटेगरी में जनाब जो पेंशन हम प्रोवाइड करते हैं वो मेल के लिए 60 इयर्स एंड अबो एज होना चाहिए और फीमेल के लिए 55 इयर्स एंड अबो एज होनी चाहिए।
1: कितना उसमें उनको मिलता है, क्योंकि इसमें होता क्या है?
0: उसमें जो डिफरेंट जो है एज बार के हिसाब से डिफरेंट रेट से, जैसे जो अप टू द एज ऑफ 59 इयर्स, दैट मीन्स 55 to 59 इयर्स के जो एज बार में आएंगे उनको 1250 रुपीज मिलेगा, और उसके बाद जो 60 इयर्स से लेकर 79 इयर्स तक हैं तो उनको 1500 मिलेगा, और जो अबो 80 इयर्स एंड अबो उनको 2000 मिलता है।
1: डिसेबल्ड के लिए सर क्या है, क्या क्या क्या क्या देना पड़ता है उनको, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है?
0: बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन है सेम है, एक्सेप्ट विडो में हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट है एंड री मैरिज सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट, स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट UDID कार्ड उनका रिक्वायरमेंट, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में कोई भी एज बार नहीं।
1: जब किसी गरीब बच्ची की कोई शादी होती है, जब उनको आप मैरिज असिस्टेंस देते हैं, तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती
0: मैरिज
1: है?
0: असिस्टेंस के लिए भी आपने ऑनलाइन जनसुकम पोर्टल पे अप्लाई करना, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। मैरिज असिस्टेंस का जो प्रोसीजर है, सबसे पहले सिर्फ वो बच्चियां जो AAY और PHH कैटेगरी में फॉल करती हैं उनको अप्लाई करना है। सेम जनसुकम पोर्टल पे उन्होंने अप्लाई करना है, और 1 month प्रायर द मैरिज, मतलब मिनिमम 1 महीना पहले उनको पोर्टल पे अप्लाई करना है। अगर उससे कम वो अप्लाई करते हैं तो उनको वो असिस्टेंस नहीं मिल सकता है। 2 month भी कर सकते हैं, 3 month प्रायर भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 महीना पहले, शादी से 1 महीना पहले उनको अप्लाई करना है। जनसुकम पोर्टल पे जाना है तो उनके लिए भी आधार कार्ड की कॉपी, अकाउंट की कॉपी, राशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उनके एक मैरिज कार्ड बनाना है, और एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से एफिडेविट देना है, ये इनको डॉक्यूमेंटेशन वहां पे लगानी है। तो उसके बाद वो एप्लीकेशन आईडी हमारे पास आती है आफ्टर वेरिफिकेशन, अगर वो एलिजिबल है एज पर गाइडलाइन तो उसको फॉरवर्ड किया जाता है फॉर सेंक्शन के लिए। और जो असिस्टेंस मैंने पहले आपको बताया कि AAY कैटेगरी को 75,000 वन टाइम मिलता है, और PHH कैटेगरी को 50,000 वन टाइम असिस्टेंस मिलता है।
1: सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जैसे जो गरीब गुरबा है उनकी मदद के लिए आगे आता है, तो उसके साथ साथ जो है आप अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, तो क्या क्या इनिशिएटिव्स डिपार्टमेंट की जानिब से डिस्ट्रिक्ट डोडा में लिए जा रहे हैं?
0: डिपार्टमेंट ऑफ जो सोशल वेलफेयर है वो पूरी ग्रास रूट लेवल तक अवेयरनेस क्रिएट करता है। जितनी भी हमारी, जैसे मैंने स्कीम्स को पहले आपको नॉलेज बता दिया कि ये जो स्कीम्स है इसके लिए डिफरेंट जो है अप टू द पंचायत लेवल्स तक ये जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाते हैं, ताकि जो जितने भी हमारी एलिजिबल बेनिफिशरीज है उनको एनरोल किया जाए, कोई भी बेनिफिशरी जो हमारा लेफ्ट आउट ना रहे। और आज का जो मेन इनिशिएटिव आपको मैंने पहले बताया कि जो 100 डेज प्रोग्राम अंडर नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर अभियान है, तो आप देखते रहे होंगे कि जगह जगह पे प्रोग्राम्स किया जाते हैं, यूथ रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, हमारे सीनियर सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि और ये जो अवेयरनेस है अप टू द ग्रास रूट लेवल, पंचायत लेवल तक ये अवेयरनेस चल रही, ताकि जितने भी हमारे जो बच्चे हैं जो इसमें अगर किसी कोई गलती से इन्वॉल्व हो चुका है तो वो उसको हम अपने जो ATF सेंटर है वहां पे उसको हम रजिस्टर करवा के उसका ट्रीटमेंट करवाएं, और जो दूसरे जो हमारी जो यूथ है उसको अवेयर किया जाए कि ये जो ड्रग्स है, ये जो एक डिजीज है, वबा है, इससे दूर रहे, इससे पूरा जो करियर जो है वो खत्म हो जाता है, इससे वो दूर रहे और खुद भी दूर रहे और बाकी को भी दूर रखे। और जो ये हमारे जो पैडलर्स हैं जो ये चीजें क्रिएट करवाते हैं, जो इस चीज को फैलाते हैं, उसके भी इंफॉर्मेशन, जैसे रिसेंटली हमने अपना जो हेल्पलाइन नंबर कंट्रोल रूम का है उसको हमने पब्लिश भी किया है कि अगर किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो उस मतलब नंबर पे हमें कॉल कर सकता है, और उसकी जो भी आइडेंटिटी है वो बिल्कुल कंसील रखी जाएगी, तो ताकि हम जो है हम जो अपनी जो इस यूथ को उसको बचा पाए और जो ये पैडलर्स हैं उनको पनिशमेंट दिला पाए। इसके
1: क्या
0: अलावा
1: ऐसा
0: मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो सोशल वेलफेयर बात है, दो इंस्टीट्यूट हमारे पास इसमें और है, एक है डिस्ट्रिक्ट हब फॉर वुमेन एम्पावरमेंट और एक वन स्टॉप सेंटर।

0: ये डिस्ट्रिक्ट हब फॉर वुमेन एम्पावरमेंट जो है, ये जो हमारा है, ये डिफरेंट जो फीमेल्स के लिए, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जितनी भी फीमेल्स ओरिएंटेड स्कीम्स है, इनकी अवेयरनेस की जाती है कि किस तरह से एक हमारी फीमेल को एम्पावर किया जाए, और दूसरा हमारा जो वन स्टॉप सेंटर है फॉर वायलेंस के लिए, जिस भी किसी भी लेडी के साथ कोई भी वायलेंस होता है उसके लिए भी हमारे पास यहाँ डोडा में ये एस्टेब्लिश है दोनों सेंटर्स। तो इनकी सर्विसेज ऑलरेडी यूटिलाइज हो रही है, और ये सेंटर जो है, जैसे वन स्टॉप सेंटर जो है हमारी हेल्पलाइन नंबर 181 है, तो जिस भी किसी भी लेडी अगर कोई भी वायलेंस हो तो वो उस पर फ्री कॉल कर सकती है, और एट एनी टाइम जो सर्विसेज डे एंड नाइट अवेलेबल होती है हमारे।
1: सर, स्कॉलरशिप्स की कुछ स्कीम जो है वो पहले चल रही थी, उनको क्यों कर सर बंद किया गया है, और इस वक्त जो है क्या उम्मीद जताई जा रही है कि आगे को आने वाले वक्त में वो फिर से स्टार्ट हो सकती हैं?
0: स्कीम्स को ऐसे कोई भी स्कीम ऐसे मतलब अभी बंद नहीं हुई है, स्कीम चल रही, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और एससी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप और ओबीसी, तो माइनॉरिटी की स्कीम भी जो है अभी ये फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, तो जो जो नोटिफिकेशंस निकलती जाएंगी ना, हम आप तक ये बात पहुंचाएंगे फॉर अवेयरनेस के लिए, ताकि जितने भी बच्चे हमारे हैं वो एलिजिबल बच्चे हैं उनको अप्लाई कर सकें।
1: पूरा जिला जो है इस वक्त सर आपकी बात सुन रहा है, और आज यहाँ से आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा उन तमाम एलिजिबल पर्संस के लिए जिनके लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीमें निकाली हैं, उनके लिए क्या
0: मेरा
1: मैसेज?
0: मैसेज सारे जो भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, चाहे वो ओल्ड एज पर्सन है, विडोज हैं, या स्पेशली एबल्ड से, मेरा एक तो ये उनके लिए मैसेज रहेगा कि उनके अलावा भी ये जो हमारे जो एक्सपीआरआईज हैं, सीनियर सिटीजन है, या मीडिया पर्सन है, कि अगर आपको कहीं भी किसी भी जगह ऐसा कोई बंदा मिलता है कि वो इस एज जो एज ग्रुप मैंने आपको बताया कि अभी तक उसको हमारे डिपार्टमेंट का कोई बेनिफिट नहीं मिला है, तो वो हम तक ये इंफॉर्मेशन दे सकता है। हम तो ऑलरेडी ये अवेयरनेस कैंप्स कर रहे हैं कि जहाँ भी कोई भी अगर लेफ्ट आउट बचा है उसको एनरोल करने के, उसके अलावा अगर कहीं भी आपको ये चीज़ कोई बंदा मिलता है तो हम तक ये बात पहुँच जाए, ताकि हम वहाँ तक हम पहुँच के उसको एनरोल करें। सिमिलरली जो मोटराइज ट्राईसाइकिल के लिए जो है, अगर कोई भी ऐसा स्पेशली एबल्ड पर्सन है तो वो भी अप्लाई करे, उनको हम मोटराइज ट्राईसाइकिल अवेलेबल करवाएं, ताकि वो अपनी जो मूवमेंट है टू एंड फ्रो मूवमेंट आराम से करे। और इसके अलावा अब हम इस साल, जैसे कि हर साल हम अलिम्को के तहत कैंप्स लगाते हैं प्रोस्थेटिक एड फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इस साल भी हम वो कैंप्स लगाएंगे अलग अलग जगहों पे, ब्लॉक लेवल्स पे या पंचायत लेवल्स पे, वो अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की जाएगी फॉर पब्लिसिटी के लिए। तो वहाँ पे यही रिक्वेस्ट रहेगी सारी, जिसको भी किसी भी अप्लायंस की, जैसे व्हील चेयर की, हेयरिंग एड की, जो भी नीड है वो वहाँ तक आके अपने आप को रजिस्टर करवाए, और जो बच्चे हैं, जो हमारा जो स्टूडेंट्स हैं, तो मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब हम स्कॉलरशिप अप्लाई करवाते हैं तो उस टाइम थोड़ा सा एक इशू हमारे पास आता है कि बच्चे के पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते, तो मेरी इन सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्यूमेंटेशंस को कंप्लीट करवाएं, कहीं भी अगर किसी भी जगह पे उनको डॉक्यूमेंटेशन लेने में कोई हिंड्रेंस आती है तो वो हमें अप्रोच कर सकते हैं, चाहे कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू, ताकि हम कंसर्न एजेंसी को, जो भी चाहे वो हमारे तहसीलदार साहिबान हो या कोई भी इंस्टीट्यूट, जहाँ से उनको कोई भी इशू आ रहा है अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए, तो उनको वहाँ यहाँ से हम असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, उनके डॉक्यूमेंटेशंस बिफोर द पब्लिकेशन जो हमारी जो स्कॉलरशिप की स्कीम जो ही पब्लिश हो जाए, ताकि उस टाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे हमारे एनरोल करके इन चीज़ों का बेनिफिट ले और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू। और
1: लास्ट में
0: साथ साथ
1: एक
0: में एक और ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने आपको बताया कि जो हम स्पॉन्सरशिप देते हैं ऑर्फन बच्चों को, जो हम स्पॉन्सरशिप देते हैं, चाहे वो वेदर इज सिंगल पेरेंट ऑर्फन है या डबल पेरेंट ऑर्फन है, या कोई ऐसा पर्सन जो लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज से, मतलब जो उसके लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज है, तो जो हम 4,000 पर मंथ जो स्कॉलरशिप स्पॉन्सरशिप हम देते हैं, तो अगर ऐसा कोई आपकी नज़र में या कहीं भी आप कोई ऐसा आता है, तो हमारी नॉलेज में ऐसे ऑलरेडी हम इसके अप्लीकेशन ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर कहीं सेट किसी जगह पे ऐसा आपको मिल गया वो अभी एनरोल हमारे पास नहीं हुआ, तो वो इन्फॉर्मेशन भी हम तक कोई किसी भी मीडियम के थ्रू, थ्रू कॉल, थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू मेल हम तक पहुंच जाए, ताकि हम उस बच्चे को भी एनरोल करें, ताकि वो भी अपनी जो है एजुकेशन है और उसका जो वेलबींग है कंप्लीट करे और उसका हम केयर भी कर सके। तो उसके अलावा अगर कोई बच्चा जो है ऑर्फन बच्चा है जिसके पेरेंट है ही नहीं, तो अगर वो प्लाश परीक्षा में एनरोल होना चाहिए तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आप हमें दे सकते हैं, ताकि हमारे जो सी एच एल्स हैं या डी सी पी यूनिट वहाँ तक पहुँच के, तो हम उस बच्चे को रेस्क्यू करके अपने ये जो CCIs है वहां तक तो पहुंचाए ताकि वहां पे उसकी वेलफेयर और सेफ्टी हो।
1: सामिन ये थे जिला डोडा के डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जनाब जुबेर अहमद साहब, जिन्होंने महकमा समाजी बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों और अवामी फलाही इकदाम के बारे में अहम मालूमात हमारे साथ शेयर की। याद रखिए, हुकूमत की फलाही स्कीमें तभी कामयाब होती हैं जब सही मालूमात सही लोगों तक पहुँचे। अगर आप या आपके आसपास कोई मुस्तक फ़र्द मौजूद है तो उसे इन स्कीमों के बारे में ज़रूर आगाह करें। इसी पैगाम के साथ अपने मेज़बान राजा रहबर जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते एक नए मौजू के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना रखिएगा ख्याल। खुदा हाफिज़। सुब्बा खैर।

आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम सुबह खैर। ये आकाशवाणी भद्रवाह है एफएम 101 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:05 हुए हैं। अब पेश है रोजगार खबरनामा। जेके एसएसबी यानी जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की एक इतलाह के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में वेटनरी फार्मासिस्ट और असिस्टेंट कंप्लायर की असामियों के लिए दरख्वास्त तलब करते हैं। असामियों की कुल तादाद 194 है, जिसमें एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन जम्मू डिवीजन के लिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में वेटनरी फार्मासिस्ट के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 49 असामियां, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 12 असामियां, शेड्यूल ट्राइब 1 और शेड्यूल ट्राइब 2 कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 27 असामियां, ALCIP यानी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब रहने वाले उम्मीदवारों के लिए 6 असामियां, RBI कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 9 असामियां और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 7 असामियां दरकार हैं। और कश्मीर डिवीजन में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 15 असामियां, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 7 असामियां, ST1 और ST2 कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 5 असामियां दरकार हैं। तालीमी काबिलियत में इन असामियों के लिए उम्मीदवार का बैचलर इन साइंस में जूलॉजी का मजमून होना जरूरी है, जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट, जेके फंड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कंप्लायर जम्मू डिवीजन के उम्मीदवारों के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 11 असामियां, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी OBC RPA EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 2-2 असामियां, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल ट्राइब 1 शेड्यूल ट्राइब 2 कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 6 असामियां, ALCIP यानी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के लिए 1 असामी दरकार है, जबकि कश्मीर डिवीजन के लिए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 9 असामियां, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 1 असामी, शेड्यूल ट्राइब 1 और शेड्यूल ट्राइब 2 के उम्मीदवारों के लिए 4 असामियां, OBC और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 2-2 असामियां दरकार हैं। तालीमी काबिलियत में इन असामियों के लिए उम्मीदवार का किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th पास होना लाजमी है। उम्र की हद में जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 20 से 40 साल, SC ST RBA ALCIB और EWS कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद 20 से 43 साल, OBC कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 20 से 42 साल और EWS कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 20 से 48 साल रखी गई है। उम्मीदवारों को दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करवानी होंगी। दरख्वास्त की फीस जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये रखी गई है, जबकि SC ST EWS और PWBT कैटेगरी के उम्मीदवारों को 500 रुपये अदा करनी होगी। दरख्वास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 19 मई 2026 मुकर्रर है। मजीद जानकारी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। वेबसाइट है www.jkssb.nic.in। समिन वेबसाइट फिर से दोहराते हैं। वेबसाइट है www.jkssb.nic.in। समिन ये था।

रोजगार खबरनामा। ये आकाशवाणी भद्रवाह एफएम 101 मेगाहर्ट्ज पर समय सुबह के 9:09 हुए हैं। अब पेश है आपसे रात 10 बजे तक रिले किए जाने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। 9:20 पर आकाशवाणी जम्मू से आप सुनेंगे डोगरी में खबरें। 9:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे कश्मीरी मौसीकी।

सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आकाशवाणी मुंबई से आप विविध भारती के प्रोग्राम सुनेंगे। शाम 5 बजे हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे भद्रवाही मौसिकी और 5:30 पर प्रोग्राम किसान वाणी।

शाम 6 बजे हिंदी और 6:05 पर अंग्रेजी में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। शाम 6:15 पर डोगरी में खबरें और तबसरा आकाशवाणी जम्मू से रिले किया जाएगा। छह बजकर 30 मिनट पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे फिल्मी नगमे। सात बजे हालात हाजरा पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन, 7:30 पर कश्मीरी में खबरें, 7:40 पर उर्दू में खबरें और तबसरा, और रात 8 बजे प्रोग्राम वादी की आवाज आकाशवाणी श्रीनगर से रिले किया जाएगा। रात 8:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे सराजी मौसिकी। रात 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज एट 9 और 9:15 पर उर्दू में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी।

रात 9:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे प्रोग्राम गाने पुराने। समय ये था खुलासा आज के रिलीज किए जाने वाले प्रोग्रामों का। ये आकाशवाणी भद्रवाह FM 101 MHz पर समय अब समाप्त कीजिए पुष्पा फिल्म से नगमा।

हम आकाशवाणी भद्रवा से आपसे मुखातिब हैं एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़ पर। 9:20 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी जम्मू से डोगरी में खबरें रिले की जाएंगी। रिले का इंतजार कीजिए।

आप सुन रहे थे कश्मीरी मौसिकी। हम आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब हैं एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने वाले हैं। अब विविध भारती के प्रोग्राम आकाशवाणी मुंबई से शाम 5 बजे तक रिले किए जाएंगे। रिले का इंतजार

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका हैं ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही हैं।
1: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना? अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हाँ, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भर आए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गई। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

लौटकर मां ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही मां जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहां रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भराया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तब घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी। मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहड़ सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थीं, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए, और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और उसमें नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी मां ने यहां उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस मां का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं मां बन गई हूं। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, माँ की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा? उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहाँ तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्चे हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बांझ हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे? ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरव उस बच्चे

जिन्हें कांटों से जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा, जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुदी आंखें अपनी मां को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूं। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्हे नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई, मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या मां बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? मां बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या

बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे? लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरो ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं, दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इन सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को मां का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्चे पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था, मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्चे मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती, थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

ते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूँ कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दो राहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला। जन्म देने वाली मां को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए। अनुष्का की जन्मदात्री मां भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली माँ है, मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीर और निर्विकार भाव से इस नियत को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने मां पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपने सुविधानुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सूनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कसकर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली माँ हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था।

घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती। खामोशी उसकी सदा बन गई थी, उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी, अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले माँ ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी मां की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, माँ तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया। लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलटकर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था, एक नई शुरुआत का। उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल बनर्गी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में ये गजल।

यह आवाज थी तलत महमूद की और कलाम था एहसान मिरिठी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गजल।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की लिखी गजल अभी आपने सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और ये फिल्म थी गजल।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए। बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए। इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

सुरैया की आवाज़ थी और फिल्म का नाम था मिर्ज़ा गालिब। गुलाम मोहम्मद की संगीत निर्देशन में ये गालिब की रचना थी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। खय्याम साहब की संगीत निर्देशन में बशर नवाज का लिखा गुलाम है ये, आवाज भूपेंद्र की और फिल्म का नाम है बाजार।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

पेशी खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। शहरयार साहब की ये रचना है, सुरेश वाडेकर की आवाज में, फिल्म गमन से हमने ली है। संगीतकार हैं जयदेव।

सुरेश वाडेकर की आवाज में अभी आपने फिल्म गमन की ये गजल सुनी और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शंकर हुसैन की ये गजल सुनवा रहे हैं, रचना जानिसार अख्तर की और संगीत खयाम साहब का।

लता मंगेशकर की गाय फिल्म शंकर हुसैन की इस गजल के साथ ही आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। और आज दोस्तों हम आपको बता दें, आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। यानी जो 2026 की थीम है वो है हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन महत्वपूर्ण है। तो ये जो पक्षी हैं वो वाकई हमारे जीवन में, इस समाज में, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत मायने रखते हैं। और फिल्मी दुनिया में भी गीतकारों ने, फिल्मकारों ने इन पक्षियों को अपनी फिल्मों में स्थान दिया है। तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत मधुर गीत जहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्षी का जिक्र है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म आग का गीत। गीतकार हैं बहजाद लखनवी और संगीत राम गांगुली का है। हम आपको बता दें 1948 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म है ये आग, जो बहुत ही लोकप्रिय और भावनात्मक फिल्म रही। और बहजाद लखनवी ने इसमें गीत लिखे और राम गांगुली ने इसका जो संगीत पक्ष है उसे संगीतबद्ध किया। ये गाना नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया गया था। दोस्तों ये गाना विरह और पुरानी यादों के दर्द को कोयल की आवाज के साथ जोड़ता है। जैसे कि देखिए ना, कोयल की बोली हमें सुकून देती है ना। कोयल की जो मिठास है वो दिल को भाने वाली होती है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, प्रेम में डूबे होते हैं, विरह में होते हैं, तो ये आवाज़ भी हमें खलती है। बस यहाँ नायिका की यादों को जगाकर उसे शोर के रूप में ये कोयल की आवाज़ नायिका को प्रतीत हो रही है। तो ये गीत जो है फिल्मों के शुरुआती दौर के सबसे भावपूर्ण गीतों में से एक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने फिल्म आग का ये गीत सुना। गीतकार थे बहजाद लखनवी और संगीतकार थे राम गांगुली। हमारी फिल्मों में हमारे गीतकारों ने जिन गीतों को लिखा उसमें पक्षियों को कई बार प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म माया का, लता मंगेशकर ने इसे आवाज दी है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और सलील चौधरी की धुन है। वियोग अकेलेपन और पुरानी यादों के साथ साथ एक नई शुरुआत को दर्शाता है ये गीत। दोस्तों आपने फिल्म देखी होगी माया, जहां माला सिन्हा और देवानंद पर ये गीत फिल्माया गया है और माला सिन्हा और देवानंद की जो जोड़ी है बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ गीत गहरे दुख और अकेलेपन को दर्शाता है और पंछी यानी प्यार या उम्मीद जिसे हम कहते हैं वहां से जाने को कहता है कि जहां बाहर है वहां तुम चले जाओ, जहां खुशियां हैं वहां चले जाओ पंछी, क्योंकि यहां तो सिर्फ दुख ही दुख है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म माया का ये खूबसूरत गीत।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्टकार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
1: खत लिख दे।
3: जी हाँ, मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दोपहर 3 बजे। तो दोस्तों, मैटिनी शो में आज हम बात कर रहे हैं पंछियों पर, कि किन गीतकारों ने किन किन फिल्मों में इन पंछियों का सहारा लिया। 1950 की एक फिल्म है बाबुल, उस फिल्म का एक गीत आपको याद होगा, पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है, एक अमर प्रेम गीत बन गया है, और इसे महान संगीतकार नौशाद साहब की धुन पर शकील बदायूं ने लिखा था और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। ये गीत नायिका की पहली प्रेम की अनुभूति और उसके खिलखिलाते हुए मन की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। मतलब इस गीत का जो मूल भाव है वो विरह या दर्द नहीं, बल्कि पहली बार हुए प्रेम का उत्साह और आनंद है। जब नायिका को अपने प्रिय से प्रेम हो जाता है तो उसे पूरी प्रकृति में प्यार का संगीत सुनाई देता है। और जहाँ तक बात है कि पिया पिया गाने लगा पंछी बन के मन, तो जहाँ तक हम समझते हैं गीतकार के लिखने का उद्देश्य रहा होगा कि इस गीत में पंछी को नायिका के मन की स्वतंत्रता और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में गीतकार ने दर्शाया होगा, कि जैसे जंगल में पंछी अपने साथी को पुकारता है, और पंछी के माध्यम से कवि ने यह दर्शाया है कि प्रेम में बंधने के बाद नायिका का मन, जो पंछी रूपी मन है, वो सांसारिक बंधनों को छोड़कर अपने प्रेमी की दुनिया में उड़ जाना चाहता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है बाबुल।

जी तो दोस्तों, मैटिनी शो में अब हम आगे बढ़ते हैं और फिल्म चोर मचाए शोर, जो कि 1974 की फिल्म है, उसका एक गीत है, कौन सा बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। एक बेहद प्यारा और रोमानी युगल गीत है। और इस सदाबहार गाने में जो नायक और नायिका हैं, शशि कपूर और मुमताज के बीच के प्यारे पलों को दिखाया गया है। और जहां तक गीत की बात है, लगता है कि ये गीत रूपक के माध्यम से कुछ बातें कहता है। जैसे कि गाने में तोता और मैना दो अलग अलग डालियों पर बैठे हैं, जो नर और मादा के एक प्रतीकात्मक रूप हैं। और ये इस बात पर दर्शाता है कि भले ही प्यार में आप दूर हों, लेकिन जो प्यार है, बीच का प्यार है, वो अटूट और सच्चा होता है। गीतकार ये कहना चाहता होगा कि भले ही प्रेमी प्रेमिका तोता मैना के रूप में दूर दूर बैठे हों, लेकिन प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्यार है वो अटूट और सच्चा है। और तोता और मैना के उदाहरण से गीतकार ये समझाना चाहते हैं कि दो लोगों का जीवन एक दूसरे के साथ ही संपूर्ण होता है, और एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी लगती है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आवाज़ी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कित

मैटिनी शो की आखिरी पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया का गीत। प्यार, वियोग और संदेश भेजने की जिस तरह से मासूम भावना को दर्शाता हुआ ये गीत है कबूतर जा जा जा। और ये गीत मुख्य रूप से नायिका द्वारा नायक को अपने दिल की बात पहुंचाने की तड़प को दिखाता है। नायिका एक कबूतर को अपना प्रेम दूत बनाती है और उसे अपने प्रेमी के पास पहले प्यार की पहली चिट्ठी

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रही हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा।

0: আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज तलत महमूद साहब की याद का दिन है, तो इस कार्यक्रम में आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत सुना। स्वर तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था छाया। कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर का ही गाया हुआ। ये फिल्म है उसने कहा था। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद की आवाज में फिल्म दाग से सुनिए। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे सुजला
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। स्वर थे तलत महमूद और शमशाद बेगम के। फिल्म का नाम था बाबुल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कित

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सुजाता से सुनिए, आवाज तलत महमूद की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म फुटपाथ का गीत। तलत महमूद ने इसे आवाज दी है, सरदार जाफरी की रचना और खयाम साहब की धुन है।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत सुनिए। युगल स्वर तलत महमूद और आशा भोंसले की ये फिल्म है बूट पॉलिश।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीजी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म टैक्सी ड्राइवर से हमने लिया है। इस गीत को आवाज तलत महमूद ने दी है, रचना साहिर लुधियानवी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

कार्यक्रम में अब सुनिए रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, तलत महमूद की आवाज है, फिल्म का नाम एक साल।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में शकील बदायूनी का लिखा गीत, तलत महमूद की आवाज है और ये फिल्म है दिले नादा।

तो लीजिए सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुरीला सफर के सभी सुनने वालों को आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। जी कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे और हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए यानी सुरीला सफर करने के लिए तैयार बैठे हैं। सफर में हमारे साथ हैं ना आप? तो इस सफर में चलने की तैयारी आपने कर ली है हमेशा की तरह। रुकिए रुकिए रुकिए, पहले आज की इबारत तो पढ़ लीजिए। पढ़ ली आपने? अच्छा, जो लोग फेसबुक पेज से जुड़े हैं उन्होंने तो हमारी इबारत पढ़ ली होगी, लेकिन वो दोस्त वो श्रोता जो फेसबुक पेज से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं उन्हें हम बता दें, आज की इबारत है, एक बेनाम जिंदगी जीते हुए आदमी बेशक मुख्य धारा से दूर हो सकता है पर किसी की आत्मीय पुकार उसमें मोह का बीज पैदा कर सकती है, तब वो मुसाफिर पुरानी गली छोड़ जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ते हुए सफलता की चोटी छू सकता है। बहुत ही सीधी साधी इबारत है आज की, है ना? लेकिन हमारे श्रोता परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए हमने आज ये कोशिश की है कि आज इस इबारत में कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिन पर आधारित है हमारे आज के गीत, उनका जिक्र भी हम कर देते हैं। हाँ, एक खुशी की बात है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने वो शब्द लिखे भी हैं जो आज की इबारत में हमने रखे हैं। उन सभी श्रोताओं को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आज इस इबारत में जो शब्द हैं जिन पर हमारे गीत केंद्रित हैं वो है आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। जी तो इन शब्दों को सुनने के बाद आप टटोलिए अपनी प्लेलिस्ट की कहीं आपने कुछ गीतों को चुनने में गलती तो नहीं कर दी। हालांकि आज बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे गीत हमारे श्रोताओं ने चुने हैं जो हमारी प्लेलिस्ट से यानी हमारी पसंद से मेल खाते हैं। हम शब्दों को एक बार फिर दोहरा देते हैं। आज के शब्द हैं आदमी, मुसाफिर, बेनाम, चिड़िया, पुकार, धारा, मोह, बीज, चोरी और गली। हमारी पसंद के गीतों से आपकी पसंद कुछ कुछ आज मेल खा रही है और यही एक शुरुआत है इस कार्यक्रम की कि आपने हमारे कार्यक्रम को सुनना, समझना, पसंद करना शुरू कर दिया है। तो आज का सफर शुरू करते हैं। इससे पहले एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि आज इस सफर में एक प्रयोग और करने वाले हैं हम। हाँ, वो प्रयोग सीधा साधा है, वो ये कि आज जितने भी गीत हमने चुने हैं वो फिल्मी पर्दे पर किसी गायक या गायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है बल्कि उनके सहायक कलाकारों ने, डांसर्स ने बैकग्राउंड में फिल्माए गए हैं वो गीत, और ये गीत बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी हुए हैं। आप समझ गए ना हमारा मतलब फिल्मी पर्दे पर उन गीतों को जो गीत आज हमने चुने हैं किसी नायक या नायिका द्वारा उनका लिप मूवमेंट नहीं हुआ है, उन्होंने होंठ नहीं हिलाए हैं उन गानों पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो होते हैं और डांसर्स जो होते हैं या बैकग्राउंड में उन गीतों को फिल्माया गया है और वो गीत बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर इस गीत के साथ। ये गीत यकीनन आपकी प्लेलिस्ट में है, हमने देख लिया है।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। नरेंद्र चंचल की आवाज थी और फिल्म का नाम था बेनाम। जी, तो ये गीत सुनकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि पर्दे पर इस गीत को किसने गाया था। जी हाँ, पर्दे पर चंचल साहब भी थे। जब हम उन्हें देखते हैं तो चंचल साहब इस गीत को पर्दे पर गा रहे होते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कई खूबसूरत और भावनात्मक शब्द छिपे हैं जिन पर गीत चुने जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द हो सकते हैं जिंदगी, आदमी, पुकार, मुंह, मुसाफिर, गली, विश्वास, श्रद्धा, सफलता, चोटी, जीवन और बेनाम। बिल्कुल, बहुत सारे

शब्द आपने बिल्कुल सही चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मन के उस जटिल रूपांतरण को दर्शाती है जहां एक व्यक्ति शून्यता से पूर्णता की ओर यात्रा करता है। यहां बेनाम जिंदगी केवल गुमनाम ही नहीं बल्कि उस मानसिक अलगाव का प्रतीक है जहां व्यक्ति स्वयं की पहचान खो चुका होता है। तर्क और बुद्धि जहां हार जाते हैं वहां स्नेह की पुकार काम कर जाती है। ये पुकार व्यक्ति के भीतर सोए हुए मोह या जीने की इच्छा को फिर से जीवित कर देती है। अतीत के दुखों असफलताओं और पुरानी सोच से मुक्त हुए बिना नए शिखर तक पहुंचना संभव नहीं। जब मन में विश्वास अंकुरित होता है तो बाधाएं मार्ग का पत्थर नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाती हैं। तो आज के गीत भी आपने लिखे हैं, बेशक मंदिर मस्जिद में बेनाम तुझसे नाराज नहीं, मितवा मोह मोह के धागे करके आपने कोशिश की है कुछ गानों की जो हमारी प्लेलिस्ट से या हमारी पसंद से मेल खाते हैं। बाकी आपने जो अपनी इबारत लिखी है वो बहुत खूबसूरत तरीके से पेश की है।

एक श्रोता लिखती हैं कि अगर जीवन नाटक मालूम पड़ने लग जाए तो आदमी अक्सर शांत हो जाता है और दुनियावी धारा से दूर होकर जीने की कोशिश में सिर्फ संघर्ष करता रह जाता है। इसी समय किसी अपने की पुकार उसमें मुंह के धागे जोड़ देती है। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए वो मुसाफिर अतीत को पीछे छोड़ सफलता के नए आयाम छू लेता है और रेडियो पर बजने लगता है दिल को छूने वाला गीत, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी इबारत लिख रहे हैं और आपने जो गानों का कयास लगाया है वो बहुत हद तक सही भी लग रहा है, लेकिन आपको इसके लिए पूरा कार्यक्रम सुनना होगा और उस सुरीले सफर में हमारा साथ देना होगा। आइए सुनते हैं अगला गीत और उसके लिए हम सवाल भी आपसे करने वाले हैं। ये गीत है फिल्म आजाद से, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बतलाना है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, अपलम चपलम, सुना है ना आपने, बहुत ही मशहूर गीत है, किस दिग्गज नृत्य जोड़ी पर फिल्माया गया है, मतलब जो नर्तकी वहां नृत्य कर रही हैं उनके नाम आपको हमें बताने हैं। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

जी, तो ये स्वर जो आपने सुने बहुत ही खूबसूरत स्वर थे, फिल्म आजाद से हमने लिए थे, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के। पर्दे पर दो नर्तकियां इस नृत्य को करती हैं। हमने आपसे पूछा था कि ये कौन है, किस नृत्य जोड़ी पर ये गीत फिल्माया गया है, आपको उनके नाम बताने हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के सभी श्रोताओं को नमस्कार के साथ, आज का एक गीत मुझे लग रहा है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद ही गाना हो सकता है, कैसे होगा बताइए। गली पर तो अभी आपने जो गाना सुना अपलम चपलम, ये हो गया है, तो ये गाना तो हमारी लिस्ट में आज शामिल नहीं है। और दूसरी बात, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज बहुत तरीके से अपनी लिस्ट बनाई है, और कई कई गाने उनको मतलब हमारी पसंद के मुताबिक हमारी पसंद मेल भी खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देने वाला सुंदर परिच्छेद कितनी सहज सुंदर शब्दों में साझा किया है आपने, जो जीवन की निराशा दूर कर देता है और आत्मविश्वास के साथ ये नश्वर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है। आपने कुछ गानों के जिक्र किए हैं, मैं बेनाम हो गया, बिल्कुल सही गाना आपने लिखा था, आगे भी आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, आप देखिएगा ये गाने हमारे यहाँ से बजते हैं इस कार्यक्रम में या नहीं, तो अगर हाँ तो हमारी और आपकी पसंद जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ गाने ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल सही पसंद किए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बातें कम और गाने वो भी पुराने सुनने ज्यादा मिले तो ज्यादा मजा आ जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से उभर कर आने वाले शब्द हैं आदमी पर, आपने बहुत सारी लिस्ट दी है, तो आप भी सुनिएगा आज का ये सुरीला सफर। हमारे साथ इस सफर में आपको बने रहना है और ये देखना है कि आपने जो गाने पसंद किए हैं क्या वो हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने बहुत सारे गानों को पसंद किया है, अब देखना यह है कि आपकी पसंद से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ सफलता किसी के प्यार पाने पर अवश्य ही प्राप्त हो सकती है, और यह आत्मीय स्नेह की अनुभूति बेजान जिंदगी में भी जीवन के अनेक रंग भर देती है। ऐसी ही भावनाओं का प्रतिबिंब आज के शब्द गीतमाला में भी नजर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के गीत शायद इस प्रकार से हो सकते हैं, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, आप भी सुनिएगा और इस सुरीले सफर में हमारे साथ आपको बने रहना है, ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए कि आपकी पसंद हमारी पसंद से कितना मेल खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपका सुरीला सफर तय करने के लिए मैं आ गई हूँ, बहुत अच्छी इबारत लिखी है और इस इबारत से आपको कुछ गीत आए हैं याद आ गए हैं जिसका जिक्र आपने हमें किया है। तो आपको बताना क्या है कि फिल्म आजाद का ये जो गीत है इसमें ये नृत्य किन दो नर्तकियों ने किया है, इनके नाम आपको पटापटा में बताने हैं, फिर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और इस गीत को भी आप महसूस करेंगे कि ये किसी नायक या नायिका ने नहीं इसे फिल्मी पर्दे पर गाया है, बल्कि समूह स्वर में ये गीत गाया गया है। आपके लिए सवाल ये है कि फिल्म किस्मत का ये गीत किसने गाया है, हम आपको बता देते हैं। इस गीत के गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीत दिया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते

ये गीत। अपने जमाने का बेहद मशहूर गीत, आपको इनके गायक कलाकारों के नाम बताने हैं। और इस गाने से क्या शब्द निकलता है? चोटी।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दार्शनिक तथ्यों को उजागर करती है। कहा गया है कि निराश में जीवन में एक क्षीण प्रेम पूर्ण रोशनी मार्ग प्रशस्त कर देती है और मन बरबस आकृष्ट हो उम्मीद के साथ उस तरफ गतिमान हो उठता है, अपनी दृढ़ निश्चय संकल्प संग हासिल कर ही लेता है। इबारत गंभीर है मगर बहुत रोचक, संगीत में प्रस्तुति का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम का सुंदर पक्ष है कि मित्रों द्वारा प्रेषित कमेंट जो ज्ञानवर्धक और तथ्यपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आप जो इबारत लिखते हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से कहते हैं और उसे पढ़ने में हमें भी बहुत मजा आता है।

वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधारण मनुष्य के सफल होने का राजा राज किसी जादुई फार्मूले में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों और दृष्टिकोणों में छिपा है जिनमें कोई भी अपना सफर शुरू कर सकता है। सफलता अक्सर असाधारण काम करने से नहीं बल्कि साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ करने से मिलती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा अंतर निरंतरता का ही है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गीतों को लिखा है कि ये गीत शायद आज की प्लेलिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक लग रहा है। मैं उत्सुक हूँ कि आप लोग कैसे सोशल मीडिया के जरिए श्रोताओं को जोड़ेंगे और कौन से सुरीले गाने सुनवाएंगे। तो आप ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता लगेगा कि कैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का फेसबुक से परिवार जुड़ा हुआ है। आप भी उस परिवार से जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और इस कार्यक्रम को समझने में हालांकि थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में इतनी ताकत होती है कि आसमान से तारे भी नाचते हुए जमीन पर उतर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बेशक आत्मा की पुकार बड़ी शक्तिशाली होती है, सफल व्यक्ति वही होता है जो इस पुकार को सुनकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलकर अपनी मंजिल को पाता है। और आपके साथ ये सफर भी सुरीला ही होने वाला है, बिल्कुल सुरीला होगा अगर आप इस सफर में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। तो अब दो सवाल आपके लिए है ना। पहला यही कि फिल्म आजाद का जो नृत्य गीत अभी आपने सुना वो किस पर फिल्माया गया था, नृत्य जोड़ी कौन थी, और फिल्म किस्मत का जो गीत अभी आपने सुना ये हिंदुस्तान हमारा है ये गीत, उसमें चोटी शब्द से ये गीत आ गया था, इसमें गाने वाले कलाकार कौन थे। और बढ़ते हैं अब आगे। वही गीत हमने चुना है जो फिल्मी पर्दे पर कोई नायक या नायिका नहीं गा रही बल्कि अन्य कलाकार गा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन की धुन।

0: पनवड़िया दो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया दो
0: कन्या रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया दो कन्या। अरे बीड़ा के सब रस ले लिया।

जी तो हमारे श्रोताओं ने सही जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आपने लिखा है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो है दो अभिनेत्रियों डांसर पर अभिनेत्रियां जो डांसर अभिनेत्रियां थी उन पर फिल्माया गया, यानी जो डांसर्स थी नृत्य जोड़ी थी उन पर फिल्माया गया था, वो थी सई और सुबुलक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा है आपने, आपका जवाब और कई सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ये नृत्य जोड़ी थी सई और सुबुलक्ष्मी की।

और हमारा दूसरा सवाल था कि फिल्म किस्मत में जो गीत आपने सुना, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस गीत में गाने वाले कलाकार कौन थे? आपने बिल्कुल सही जवाब दिया हमारे श्रोताओं ने कि आवाजें प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी की थी, जिन्होंने इस गीत को गाया था, और साथ में साथी भी थे जिन्होंने इस आवाज को मिलजुल कर आवाज दी थी, यानी प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी ने इस गीत को गाया था, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि सही जवाब आपने हमें दे दिया है। हमारी एक श्रोता लिख रही है कि सफर का टिकट तो ले लिया है कि आपके साथ चल लें। बिल्कुल चल लें, जब सफर का टिकट आपने ले लिया है तो देर किस बात की, हमारे साथ इस सुरीले सफर में शामिल हो जाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए तैयार सभी मित्रों को दोपहर का नमस्कार, और इस सुरीले सफर की पायलट मंदाकिनी जोशी जी को भी नमस्कार। आपके साथ एक घंटे के सुरीले सफर के लिए हम सभी संगीत प्रेमी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और हम भी तैयार है आपको इस सुरीले सफर में जगह जगह जाकर अलग अलग चीजों की सैर करवाने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे। अच्छा, आपने पूरी एक कविता लिख डाली है, आप वही कवि श्रोता हैं हमारे। एक बेनाम जिंदगी जीता हुआ वो आदमी भीड़ में रहकर भी भीड़ से दूर था, चेहरे पर खामोशी की धूल जमी थी और दिल जाने कितने दुखों से चूर था। न कोई अपना उसे आवाज देता, न किसी चौखट पर उसका इंतजार था, वो चलता रहा उस उम्र भर में यूं ही तन्हा, जैसे रेगिस्तान में भड़का कोई गुब्बार था। पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे, रातों की चुप्पी में उसके आंसू तकिए से लिपटकर सोया करते थे। फिर एक दिन किसी आत्मीय पुकार ने उसके सूने मन को छू लिया, जैसे बरसों से की धरती पर पहली बारिश ने प्यार लिख दिया। एक आवाज थी जिसमें अपनापन था, एक नजर थी जिसमें श्रद्धा का उजाला था, उसने पहली बार महसूस किया वो भी किसी के लिए अनमोल निराला था। क्या बात है, वो मुसाफिर फिर मुड़ पड़ा जीवन की ओर, पुरानी गलियों को पीछे छोड़ आया, टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को जोड़कर अपने भीतर नया सूरज उगाया। दर्द अब भी था उसके सीने में, मगर आंखों में उम्मीद का दीप जलने लगा। जो आदमी खुद को खो चुका था, कहीं वो फिर से खुद से मिलने लगा। क्या बात है, और देखो जिसे दुनिया ने बेनाम कहकर ठुकराया, वही एक दिन की चोटी पर मुस्कुराया, क्योंकि प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा बीज है, पत्थर दिल में भी जीवन उगा जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आप रचते हैं, आपको मैं सैकड़ों साधुवाद देती हूं। एक श्रोता लिखते हैं कि वे इस सप्ताह में तीसरी बार दर्शन देने के लिए सुरीले आवाज के लिए मधुर वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भई ये हमारी ड्यूटी है ना, आप इसे लिख लेते हैं कि क्या हुआ कब आने वाले, लेकिन हमारी ड्यूटी है, जब जब ड्यूटी लगेगी तब तब हमें तो आना ही पड़ेगा। अब ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी अपनी, फिर हमारे श्रोता शिकायत करेंगे कि मंदाकिनी जी तो अपनी तारीफ में लगी रहती है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यार बरसाया है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। चलिए तो इस सुरीले सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हमने उन गीतों को चुना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर किसी नायक या नायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके साइड आर्टिस्ट जो हैं या अन्य कलाकार जो हैं उन्होंने इन गीतों को गाया है, या बैकग्राउंड गीत के रूप में ये गीत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आई हूँ। सलिल चौधरी का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है दो बीघा जमीन।

हमारे और भी श्रोताओं ने सही जवाब हमें दे दिया है। आप लिखते हैं कि सही और सुबह लक्ष्मी दो नर्तकियां हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर नृत्य किया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो आपने गीत सुनवाया था हिंदुस्तान हमारा है, उसे आवाज दी थी अमीरबाई कर्नाटकी और खान मस्तान ने। जी, इसमें प्रदीप कुमार की आवाज है, प्रदीप जो हमारे गीतकार प्रदीप हैं, कवि प्रदीप हैं, उनकी आवाज है और उनका साथ अमीरबाई कर्नाटकी दे रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गुमनामी के अंधेरे में खुद को समेटे हुए व्यक्ति भले ही दुनिया की नजरों से उजल हो, लेकिन जब कोई निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन से उसे पुकारता है तो उसके भीतर की सोई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह आत्मीयता उसके मन में जीवन के प्रति एक नया आकर्षण पैदा कर देती है। और आप लिखते हैं कि वही पथिक जो कल तक ठहर चुका था, अब अतीत की संगीन गलियों और निराशा को पीछे छोड़कर अटूट आत्मविश्वास के साथ नई राहों पर निकल पड़ता है। यही संकल्प और श्रद्धा उसे साधारण से असाधारण बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जो शब्द है वो अत्यंत गहरे, सकारात्मक और भावनात्मक है, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों ही शब्दों में आदर और निष्ठा की भावना छुपी होती है। श्रद्धा मन का वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को किसी

लेकर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान जी को हार्दिक धन्यवाद वो देना चाहते हैं। एक श्रोता ने जानना चाहा कि मैं बेनाम हो गया, ये आवाज क्या

0: इस गीत में से शब्द आया है चिड़िया।
1: चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। चुन चुन करती आई चिड़िया।

भी आया बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू। नाचो कालू, नाचो कालू, मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, सुन सुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

जी, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत काफी हद तक मेरे पर ही फिट बैठती है। अच्छा, आप पर फिट बैठती है कैसे? कि महंगी कॉन्वेंट स्कूल की मेरी पढ़ाई, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ, आगे मेरी हायर एजुकेशन बहुत खर्चीला। मैं कंफ्यूजन में था कि ये सब कैसे होगा। फिर मेरी इंटरनल आत्मी पुकार सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन और साइड बिजनेस करके अपनी हायर एजुकेशन का खर्चा निकालूंगा। ऐसा ही हुआ। उदासी की गलियां को छोड़कर जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ माता रानी के आशीर्वाद से सफलता हासिल करी और आज बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, हमारे सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है कि साई और सुबह लक्ष्मी वो नर्तकियां थी और गायिका थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। आपने एक ने सही जवाब दिया कि किस्मत के गायक प्रदीप, कवि प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी हैं। बिल्कुल सही बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 20 मिनट शेष रह गए हैं, अभी भी ओल्ड सॉन्ग चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अरे तो ओल्ड सॉन्ग ही तो चलने वाले हैं अंत तक। आप इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आदमी बेनाम होकर मुख्य धारा से दूर होकर तब जीने लगता है जब वो सभी ओर से हताश हो जाता है। जीवन उसे निरर्थक लगने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। हताशा के उस समय उसके किसी अपने की पुकार से उसके आत्मविश्वास में नई जान आती है और अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ वो अपनी आगे की मंजिल तय कर लेता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दुख से भरी हो या सुख से ही भरी हो। जीवन नैया डगमग डगमग चलती है, कई हिचकोले आते हैं, उसी में फूलों भरी जिंदगी आती है, कांटो भरी शाम भी। व्यक्ति इन्हीं उतार चढ़ाव में अपने को एडजस्ट करते हुए चलता है। अगर जीवन के सफर में सिर्फ फूल ही फूल हो या कांटे ही कांटे हो तो एक रास्ता हो जाएगी, सुख दुख के अनुभव से वंचित रह जाएगा। खट्टा मीठा कड़वा कसेला सभी प्रकार के अनुभव जीवन में आते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो इस सुरीला सफर हमने

रखा है जहां पर ये सारे स्वाद हमें महसूस करने हैं, है ना? और अंत तक हमें अपना साथ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं। फिल्म सफर के साथ मन्ना डे और साथियों की आवाजें, इंदिवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। याद कीजिए इस गीत को फिल्माते समय आपको किन का चेहरा याद आता है। हाँ, किसी नायक या नायिका ने तो इस गीत को पर्दे पर नहीं गाया है ना?

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि छुन छुन करती आई चिड़िया जो गाना आपने दिल्ली दूर नहीं का सुनवाया था, उसके मुखड़े में इबारत में कोई शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है? चिड़िया शब्द हमने आपको बताया था ना कि चिड़िया शब्द वहीं से उस गीत को लिया गया है। और एक

देखते हैं कि संगीत एकमात्र ऐसा माध्यम है जो दुखों के लिए भी काम कर सकता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, मैं एक मुसाफिर बेशक पुरानी गली छोड़कर बेनाम जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा के बल पर एक दिन सफलता जरूर हासिल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 2 बीघा जमीन का ये गाना मेरे पिताजी आखिरी दिनों में हमेशा सुनते थे। उनकी मृत्यु मई महीने में हुई थी। बिल्कुल, ये गीत है ही ऐसा जहां इंसान पुराने जो लोग हैं वो इसे सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी भी तो यहां मुसाफिर ही हैं, हमें अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, जाने कब किस मोड़ पे मंजिल मिल जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों को आज मैं नमस्कार कहता हूं, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और विविध भारती जिसे सुनकर हम कहेंगे, हे विविध भारती, जिस गली में जिस घर में रेडियो बजना रहा हो उस गली से गुजरना नहीं, क्योंकि विविध भारती हमारी खास पसंद है। और अब हम इस सफर के आखिरी सोपान पर हैं, जहां पर हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम अपनापन। फटाफट जवाब भेजिएगा, ये बताइएगा कि आदमी मुसाफिर है जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, इसमें शब्द आता है मुसाफिर और आदमी, ये मुख्य रूप से किस अभिनेता और बाल कलाकार पर फिल्माया गया था, और पर्दे पर इस दौरान आपको कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं। जी हाँ, ये गीत जो पर्दे पर गा रहे हैं वो अभिनेता कौन है और बाल कलाकार कौन है उनके साथ, और इसी गाने में मुख्य दृश्य के दौरान कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में सवार दिखाई देते हैं। फटाफट लिखिएगा, बहुत कम समय बचा है।

एक श्रोता ने लिखा है कि कितना बढ़िया गाना है चुन चुन करती आई चिड़िया। इस चिड़िया के ऊपर कई कहानियां बनी हुई हैं जिसको बच्चे बड़े ध्यान से प्रेम से सुनते हैं।

इस सवाल का जवाब आपने दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आदमी मुसाफिर है गाना मुख्य रूप से अभिनेता सुधीर दलवी, जिन्होंने एक भिखारी की भूमिका निभाई थी, और बाल कलाकार निवेदिता जोशी थी जो बाद में निवेदिता सर्राफ के नाम से जानी गई, उन पर फिल्माया गया था। और इस गाने के मुख्य दृश्य के दौरान कौन थे, अभिनेता जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित भी बस में सफर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? कुछ याद आया आपको?

तो सुरीला सफर में आज इतना ही। आज का ये सफर आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ यूं सफर करना, और सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में इस तरह से गोते लगाना बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो बस आज का ये सफर यहीं तक। इस कार्यक्रम से, इस सफर से आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

मित्रों, त्रिवेणी में आज विषय थोड़ा खास है, थोड़ा दिल से जुड़ा हुआ और शायद थोड़ा सा चुभने वाला भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती की, लेकिन सिर्फ दोस्ती की नहीं, सही दोस्त चुनने की। दोस्ती एक ऐसा शब्द जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, कॉलेज के किस्से, हर जगह दोस्त हमारे साथ होते हैं। लेकिन क्या हर दोस्त हमारे लिए सही होता है? शायद नहीं। इसीलिए दोस्त चुने, मगर ध्यान से। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं? सोशल मीडिया पर आपके कितने फ्रेंड्स हैं? सैकड़ों, हजारों? लेकिन अगर रात 2 बजे आपको किसी की जरूरत पड़े तो आप किसे कॉल करेंगे? बस यही फर्क है दोस्तों की लिस्ट और सच्चे दोस्त में। साथियों, दोस्ती सिर्फ टाइम पास नहीं होती, ये एक जिम्मेदारी होती है। दोस्ती वो रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। दोस्त हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी पसंद का आईना होते हैं।

दोस्त वो नहीं होता साथियों जो सिर्फ खुशियों में साथ हो, बल्कि वो है दोस्त जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहे, आपकी कमियों को जानकर भी आपको स्वीकार करे और जरूरत पड़े तो आपको सही रास्ता भी दिखाए। आज के समय में दोस्ती का एक नया रूप सामने आया है, ऑनलाइन दोस्ती। लोग एक दूसरे से मिले बिना ही दोस्त बन जाते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। हर प्रोफाइल के पीछे एक सच्चा इंसान ही हो, ये जरूरी नहीं। कभी कभी हम पूरी कोशिश के बावजूद गलत लोगों से जुड़ जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करें, सबक लें और धीरे धीरे दूरी बनाएं। याद रखें, गलत दोस्ती कभी एकदम से नुकसान नहीं करती, वो धीरे धीरे असर करती है। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त मेहनत करते हैं, सपनों को साकार करने की योजनाएं बनाते हैं, तो आप भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं, तो आप भी वही करने लगेंगे। इसलिए दोस्त चुनना दरअसल अपनी जिंदगी का रास्ता चुनना है।

साथियों, सवाल ये उठता है, कैसे पहचाने कि कौन सही है और कौन नहीं? सिंपल सी बात, जो आपकी बुराई में साथ दे वो दोस्त नहीं, जो आपकी अच्छाई, सफलता, शोहरत और उपलब्धियों से ईर्ष्या करे वो दोस्त नहीं, जो आपकी गैर मौजूदगी में आपका उपहास करे वो दोस्त नहीं, जो आपको खुद से दूर कर दे वो तो बिल्कुल भी दोस्त नहीं। बात करें सच्चे दोस्त की, तो सच्चा दोस्त वो नहीं जो आपकी हर बात पर हाँ कहे, बल्कि वो है जो जरूरत पड़ने पर ना कह सके। सच्चा दोस्त आपकी गलतियों पर आपको रोकेगा, आपकी हार में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी जीत में आपसे ज्यादा खुश होगा। सच्चा दोस्त आपकी इज्जत करता है, आपकी बातों को समझता है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, वो कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा और हमेशा आपके साथ सच्चा रहेगा। साथियों, दोस्ती में भरोसा करने से पहले समय दीजिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए। जिंदगी एक सफर है और सच्चे दोस्त इस सफर के साथी। दोस्त बनाइए लेकिन सोच समझकर, उनके साथ दिल से जुड़िए लेकिन समझदारी के साथ। जिंदगी को आसान बनाना है तो सही दोस्त का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रमाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण के

0: आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए, इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे, इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पौचिशे बैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्रवाई की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
0: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी

0: समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
1: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
3: पंजाब में आकाशवाणी ने

0: हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: आकाशवाणी शिलांग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है ताजमहल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड का गीत। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सचिन देव बर्मन की है।

0: एक उलड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
0: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने के

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट कर

चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। हो सकता है आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े। डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिक हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

कमरिया माँ लटक होइ बकरी, झांझ बज है तो कमरिया माँ लटक होइ बकरी, नैन लड़ जाई है नैन लड़ जाई है तो मनवा माँ कटक होइ बकरी, प्रेम का छुट्टी है पटाका तो धमक होइ बकरी।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
0: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
2: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
2: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19,750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार शंकर जयकिशन थे। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब खत्म होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्ट कार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्ट कार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है, ये है हमारे सुनने वाले श्रोता

ककराला उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त, और ये हैं विनोद कुमार अढ़िया, भारती अढ़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बेन अढ़िया, इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सकें। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुँचा सकें। चलिए, आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और उनके परिवार वाले। इसी गाने को जो अब हम आपको सुनवाने वाले हैं उसे सुनना चाहते हैं गांव सांकरा सोमनी जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, दिवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, रजनी देवी साहू और मास्टर प्रणय कुमार साहू ने। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म राम बलराम में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला गीत सुनने के लिए आप सभी हैं ख्वाहिशमंद। गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, भोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज इसी गीत को सुनना चाहते हैं। सिकंदर अली खान और बदरुद्दीन, ये खत है शमसुद्दीन की बाड़ी के पास अमर सिंहपुरा बीकानेर से। आप सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल की संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, जिसे आवाज किशोर कुमार ने दी है और फिल्म का नाम है दाग।

0: हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का ये गीत सुन लिया होगा। और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला मनचाहा गीत। इसे सुनना चाहा है छत्तीसगढ़ से सीमा, शिखा, सपना, प्रीति, संध्या, मोनस और शालू ठाकुर ने। मोहम्मद रफी की आवाज है, फिल्म का नाम है धर्मवीर, गीतकार आनंद बख्शी हैं। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: ओ मेरी महबूबा।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश नदीम श्रवण का संगीत, समीर के बोल, अलका याग्निक, कुमार सानू और अजय देवगन की आवाजें। फिल्म का नाम है दिलवाले। इस गीत को सुनना चाहते हैं आप हैं छत्तीसगढ़ से संध्या सिंह, नीलेश सिंह, शैलेश सिंह, शैलू ठाकुर और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक और मीका बिरक का।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
1: मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: पोस्टमैन, चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
2: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा, तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
4: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
3: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
4: नंबर 11, पश्चिमी गली।
3: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
4: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।

0: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
1: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा आगे पढ़ो।
0: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
1: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियाडे लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
0: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: क्यों कंद स्वामी, आज मेल लेट थी क्या?
1: हाँ आज जरा लेट ही आई है पोस्ट मास्टर साहब, अब तक तो सारी की सारी डाक गांव में बढ़ जानी चाहिए थी।
0: तो क्या हुआ, यहाँ तो सबके सब खेती बाड़ी करने वाले किसान ही रहते हैं, शहर की तरह व्यापार करने वाले लखपति थोड़ी रहते हैं जो डाक का इंतजार करते रहे।
1: आप ठीक कहते हैं, आप तो यहाँ बरसों से पोस्ट मास्टर हैं।
0: इस गाँव से बहुत सी लड़कियाँ अपने अपने ससुराल चली गई है, बहुत से लड़के पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं, बस यहाँ के माँ बाप अपने अपने बेटे बेटियों के कुशल मंगल की चिट्ठियों की राह देखते रहते हैं, उन्हें ये चिट्ठियाँ मिल जानी चाहिए, बस देर सवेर की कोई बात नहीं, इसलिए जब चाहो आराम चैन से डाक बांट आना।
1: नहीं पोस्ट मास्टर साहब, मैं तो समझता हूँ कि गांव के लोग भले ही धनी व्यापारी न हो, इनके लिए सगे संबंधियों के प्रेम का कहीं ज्यादा मूल्य है। आप इनके उस आनंद की जरा कल्पना कीजिए जो उन्हें दूर बसे अपने सगे संबंधियों के कुशल क्षेम का समाचार पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है, उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है।
0: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गूढ़ बात करना खूब जानते हो।
1: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना, मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए, मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे, मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई, यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
0: मनी ऑर्डर हाँ एक है, सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
1: कौन है वो सैनिक?
0: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
1: मेरा डुप्लीकेट?
0: हाँ तुम्हारा हम शक्ल, तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंद स्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंद स्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद, अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछे और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
1: कौन है वो?
0: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
1: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
0: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था, जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है, लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया, वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है, साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है, दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया, सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है वो, 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है, अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
1: अच्छा तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है, आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
0: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
1: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है, डाक खाने का नियम तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
0: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
1: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं, और हाँ उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
0: ये लो ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना, आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: नाराज मालूम होते हो आज? क्या बात है, क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई, मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर
1: अरे
0: लाऊंगा।
1: क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा, मैं चाहूं तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूं, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो। हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुंच गए थे, और यहां तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है। साले लगाओ।
0: अरे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई श्रृंगारम? कहो, कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला, जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा।
0: अरे
1: हाँ
0: भाई, अपने राम का भी तो यही धंधा है। मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल ही कहां रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। हाँ
0: श्रृंगारम, श्रृंगारम, उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो। अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त,
1: क्यों?
0: फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है। अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों कोई झगड़ा तकरार
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ,
1: तो?
0: सुनी सुनाई कह रहा हूं। तुम जरा बात करके देखो, पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है। अजी पोस्टमैन साहब जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
2: कहिए, क्या बात है? कैसे बुलाया आपने?
1: अजी बैठिए भी। अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
2: क्षमा कीजिए श्रीमान,
1: हाँ?
2: इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर
2: है क्यों नहीं?
1: तो लाइए दे दीजिए ना, मेरा नाम सिंगारम है।
2: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
2: वाह, ऐसे कैसे दे सकता हूं मैं? ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
2: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए तो।
2: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम श्रृंगारम को नहीं जानते, जिस शिव कामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे? उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना
2: वरना क्या होगा?
0: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे? ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे। अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
1: हाँ लाओ रुपए, लाओ लाओ लाओ।
2: श्रृंगारम ये ना भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं। तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा। अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
0: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
1: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ? देखना ये श्रृंगारम के

0: और यहां भी। ठीक, ये लीजिए रुपए, 100-100 रुपए के 30 नोट हैं, अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ तो पढ़ो।
0: हाँ, लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा, अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूंगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहां कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसे ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती हैं।
0: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
0: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक खाने के कानून के खिलाफ है।
1: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
0: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
1: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ, आओगे ना बेटा?
0: आऊंगा माँ जी।

0: जरा देखकर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा, नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारा? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी न पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जी जी।

0: तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम से।
0: अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है, इतनी लापरवाही ठीक नहीं है। जी जी, जवान लड़की है। और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जी जी, भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस काम में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता है। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।
0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे, वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा, कौन जाने।
1: श्रृंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू तो क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये ऊल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे, मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ, लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो, तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ। सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो, मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी। चला जा यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता, अब जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं तुम्हारा

0: अरे सामने वो बदमाश शिंकारम खड़ा है, अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है, अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं भाग थोड़े ही हूं जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है, तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है, रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा।
2: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना, तुम मुझसे ही शादी करो।

0: तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
1: अच्छा?
0: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकोगे।
1: अच्छा, ये बात है।
0: छोड़ दे, छोड़ दे।
2: यहाँ कोई नहीं बचाएगा तुझे। तीन बार एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
1: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
2: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊ तो चलो हाल उधर कर दूंगा। क्या समझ रखा है तूने?
1: अगर मैं अपने दलबल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे। तुम जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ो, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूं, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
0: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं? आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
3: भगवान सबका रक्षक है। आओ नीला, तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
0: जी, इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई। सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
3: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
0: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
3: हाँ, हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
0: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने श्रृंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
3: ओह, तो तुम्हारी माँ नहीं है?
0: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं, और वो बदमाश श्रृंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
3: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
0: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
3: हाँ हाँ, रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
0: अरे अरे, बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
3: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने। चली गई, कितने सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है। जब उसका मंगेतर है तब ओह, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है। लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़के के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूं, अपनी मां से मिलना चाहता हूं, उससे बातें करता हूं तो लगता है जैसे अपनी मां के पास बैठा हूं। मैं अनाथ कब से अपनी मां के प्यार के लिए तरस रहा था। मां जी।
4: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
3: मां जी।

0: आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
1: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
0: अरे ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
1: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
0: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं, पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
1: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
0: मैं लाता हूँ। दवाई
1: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
0: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
1: बेटा तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
0: माँ, आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्म तक पुण्य कर्म करने चाहिए। आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
1: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं। जरा जरा मेरे पास आओ।
0: लो माँ।
2: के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे P.S. कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाई पाडाला पिकलाय आंबा, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना।
1: हो पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी।
2: जी,
3: हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
2: हाँ।
3: और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
2: क्या बात है,
3: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: प्रमिला जी, सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी।
3: जी,
2: तो हम तब से बात शुरू करें।
3: जी,
2: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला।

0: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का तबके बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे,
1: जी
0: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
1: हाँ।
0: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे,
1: जी
0: ये
1: जी
0: मेरा नेचर नहीं था।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली।
1: हाँ हाँ
0: तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं
1: जी जी
0: उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था। वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं,
1: जी
0: राजा राम शिंदे जी थे।
1: हम्म।
0: तो मैंने मेरे मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा।
1: वाह
0: तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे, तो
1: हाँ
0: एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके,
1: जी जी जी
0: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज़्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए,
1: हाँ
0: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला नारायण ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम,
1: जी,
0: क्योंकि पुराने गाने ज़्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
1: वाह वाह।
0: जी,
1: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी याद
0: पहला शो 1975 14 अप्रैल,
1: जी?
0: जो दिन गुड़ी पड़वा था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पड़वा के
1: बिल्कुल,
0: दिन,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
1: क्या बात है।
0: जी जी
1: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है,
0: मुहूर्त माना, तो
1: क्या बात
0: हमारे
1: है।
0: एक 3.5 मुहूर्त बोलते हैं, अच्छे
1: हाँ
0: जिस दिन, उनमें पड़वा बहुत अहमियत रखता है,
1: जी
0: गुड़ी
1: जी
0: पड़वा।
1: क्या बात है।
0: जी
1: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी
0: हाँ,
1: हैं।
0: फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ, जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्ना दा के साथ गाना था,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: हाँ
0: मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि
1: जी
0: मन्ना दा
1: जी
0: के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा सांगा कोणा से, वो जो गाना है
1: जी
0: मुझे देखते ही पप्पा सांगा, छोटे बच्चे भी पप्पा सांगा कोणा से। मुझे याद है, छोटे से किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी,
1: जी
0: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की, तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कोना चाहिए, ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई, मुझे
1: अच्छा
0: बोली
1: अच्छा
0: तुम तो मेरे लिए गाओगी, तो बोले हाँ जरूर
1: ओह
0: गाओगी।
1: क्या बात है,
0: बहुत मजा आया उस
1: वाह
0: सीन में
1: वाह।
0: बच्चों से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का
0: जी
1: हुआ,
0: जी
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी,
0: लिस्ट
1: आपको
0: बनाई
1: याद
0: थी,
1: है?
0: इतना सा तो नहीं, लेकिन एक दो मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए,
1: जी
0: अजीब दास्तां है ये,
1: हाँ
0: इस
1: हाँ
0: तरह
1: हाँ
0: के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल। जो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ
0: हाँ
1: आपने
0: जी
1: टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी,
0: हाँ जी
1: मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी।
0: जी
1: अब किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है, जरा मुश्किल है,
0: राइट।
1: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगे?
0: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है, मुझे वो
1: हाँ
0: बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो, वो जो
1: ओह क्या बात
0: आई
1: है।
0: लव दैट सॉन्ग, बहुत अच्छा
1: अलग अलग
0: गाना
1: गायिकाओं ने अलग
0: है।
1: अलग
0: हाँ,
1: मौके पे इसे
0: ऐसे मैं
1: गाया है।
0: मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी,
1: हाँ
0: अलग अलग
1: हाँ
0: गायिकाओं के गाने हुए,
1: जी
0: उसकी
1: जी
0: झलक
1: हाँ
0: उसमें, मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी
1: जी
0: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम को।
1: अच्छा,
0: जी
1: तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: प्रमिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं।
1: जरूर।
0: बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं,
0: जी
1: मेरे
0: जी
1: पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई,
0: अच्छा अच्छा
1: मुंबई,
0: मुंबई में ही,
1: गिरगांव में, गिरगांव
0: गिरगांव,
1: में हमारा रहना
0: जो
1: भी वहां
0: खास
1: था।
0: मुंबई की
1: सब
0: जैसे कहा जाए।
1: चाल थे सब
0: जी जी
1: ऐसे,
0: जी जी
1: और वैसे चाल थे लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था।
0: हाँ
1: किसी घर में कोई कुछ कार्य हो जैसे पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर के सब
1: आती थी,
0: काम
1: सब
0: किया करते
1: मिलकर
0: थे।
1: काम करते थे,
0: वाह, हाँ
1: बहुत मजा आता था। लेकिन पूरा
0: हाँ
1: एक चाल कुटुंब जैसा था,
0: जी
1: और सब सब गणपति दिवाली सब त्योहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि ये लगता था हम सबका एक ही त्योहार है और
0: जी
1: सब
0: जी
1: लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके,
0: अच्छा,
1: लेकिन
0: हाँ
1: घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर
0: अच्छा
1: में।
0: अच्छा
1: बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को,
0: जी जी
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था, तो
0: हाँ
1: बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी। इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था,
0: जी
1: मुझे
0: जी
1: गाने तो पसंद थी मेरी, तो हमारे स्कूल में नाष्टा नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरुओं के हिसाब से बहुत अच्छे थे,
0: अच्छा
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में,
0: अच्छा
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे
0: जी
1: और
0: जी
1: गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे,
0: ओ
1: अगर दादर में क्लास होता
0: अच्छा
1: तो
0: अच्छा
1: बहुत ही स्कूल में था, और स्कूल खत्म करके अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का,
0: अच्छा
1: तो इसीलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया।
0: वाह
1: पहली बार मैं बम्बई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि
0: जी
1: वहां म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था,
0: जी
1: तो
0: जी
1: SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था
0: हाँ
1: दिल्ली में,
0: हाँ
1: तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
0: संगीत शारदा,
1: संगीत शारदा,
0: जी जी
1: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई थी,
0: ओ
1: जी मेरी
0: अच्छा,
1: आवाज जरा भारी थी, जाड़ी थी, तो
0: हाँ
1: पुरुष के गायक के लायक थी,
0: हाँ अच्छा
1: और हाइट भी अच्छी थी,
0: जी
1: तो मैं
0: जी
1: कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है,
0: जी जी जी
1: नारद का रोल किया है स्कूल में, तो
0: हाँ,
1: स्कूल
0: चूंकि ये महिला
1: के
0: विश्वविद्यालय है
1: महिला विश्व
0: तो
1: नहीं,
0: सारे,
1: वो ये स्कूल की बात कर रही हूँ,
0: अच्छा
1: महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था,
0: अच्छा
1: तो वो हमने उधर किया
0: ओहो
1: यूथ फेस्टिवल में।

0: तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली
1: हाँ
0: दिल्ली गई बिग
1: क्या बात,
0: फेस्टिवल के,
1: अच्छा अच्छा
0: बाकी
1: अच्छा
0: फ्रेंड्स वगैरह थे
1: हाँ
0: साथ,
1: हाँ
0: बहुत
1: हाँ
0: मजा आया दिल्ली में। और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं, ऐसा हुआ था
1: क्या बात है।
0: बहुत मजा आया।
1: उस संगीत शारदा से कोई नाट्य पद जिसकी एक लाइन आप सुना
0: जरूर
1: सके?
0: जरूर,

0: वाह वाह, क्या बात है।
1: बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था। और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
2: नहीं करती
1: मंच पर, तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस से यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
2: राइट, राइट।
1: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
2: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
1: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका इस नाटक में निभाई थी। जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
2: एक तो एक यूथ फेस्टिवल का ये था, हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
1: अच्छा।
2: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया, शायद फिल्म डिवीजन भी चालू है, नहीं पता नहीं। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए। फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ और इंटर में जब थी मैंने 16 साल की, तब शादी हो गए।
1: अच्छा।
2: 42 साल का मेरा जन्म है और 58 को शादी हो गई, 16 साल की। तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई, तो पहली बेटी हो गई, तो 1962 में
1: जी
2: उसका बेटे का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटर म्यूजिक था एसएनडीटी में, तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई।
1: और
2: घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक होती है कि जाओ कि नहीं, तो वो तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी बच्चों को। तो 62 में मैंने एमए किया फिर, और फिर एमए किया, और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
1: अच्छा।
2: तलत साहब के साथ एक नंदी दुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे, तो वहां पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी, कि हमने चलेगी
1: दौड़ते
2: जाऊंगी, कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला, 3 महीने का वो टूर था हमारा।
1: क्या बात।
2: और दो बेटियां, एक 4 साल की, एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की, मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से। और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लेजेंड्स है,
1: जी जी,
2: उनका यहाँ वहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा हुआ जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने, ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे। बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला
1: तलत साहब को। आपने
2: तलत

0: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
1: घूमी
0: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
1: नहीं, सबसे
0: आपने वेस्ट
1: पहले
0: इंडीज के बारे में बताया।
1: ज्यादा तो जी
0: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ
1: वेस्ट
0: गए?
1: इंडीज तलत साहब के साथ गए,
0: हाँ
1: फिर उसी उसी को नंदी दुगल जी ही थे
0: जी,
1: प्रमोटर अगली बार,
0: हाँ
1: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ
0: हाँ हाँ
1: जाने के लिए, मैंने कहा बाबा भाई मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा,
0: जी।
1: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया, हमने टूर किया
0: अच्छा,
1: ईस्ट अफ्रीके का।
0: हाँ,
1: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों
0: जी
1: के लिए,
0: जी
1: तो उन्होंने पहले ही शर्त डाली कि मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
0: हाँ
1: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं
0: हाँ
1: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए, तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी,
0: जी जी
1: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम, तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की
0: जी
1: रेंज और आशा भाई की रेंज, तो
0: हाँ
1: दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी।

0: करके,
1: अच्छा
0: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना। तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था,
1: अच्छा
0: दम मारो दम।
1: हाँ हाँ हाँ
0: तो किशोर कुमार जी, मेरे बाद उनकी एंट्री थी,
1: जी जी
0: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते
1: अच्छा
0: थे। तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने
1: हाँ
0: नोटिस किया
1: हाँ
0: उनको,
1: जी जी
0: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सर सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहां शेर कैसा है इधर उधर इधर ऐसा घूमता है, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
1: जी जी
0: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो
1: जी
0: अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा, और एक बार स्टेज पे गए
1: हाँ
0: छुट गए फिर। मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे का कि अपने तीन चार गाने गा के ये
1: हाँ
0: लोगों सामने से सुनते बैठू,
1: हाँ
0: बहुत ही भाग्य था
1: क्या
0: मेरा
1: बात
0: इस
1: है।
0: बारे। रफी
1: मगर
0: साहब को
1: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ
0: डुएट नहीं गाया।
1: नहीं गाया? अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम
0: जरूर
1: सुने तो कौन सा
0: जरूर।
1: होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे
1: लोगों
0: प्रस्तुत
1: ने
0: किया?
1: बहुत नाम भी रखे,
0: हाँ,
1: क्योंकि ये क्या है, वो
0: मतलब
1: दूसरों के
0: टीका टिप्पणी की आप, जो आपका
1: टीका
0: कहना है।
1: टिप्पणी
0: जी
1: की,
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: मेरे लिए अच्छी थी साबित हुई।
0: हाँ,
1: हाँ, उसकी वजह ये है कि लोगों को टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे

0: जी
1: स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी उसमें।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: ओ हो,
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी,
1: तो ये जिनको मालूम नहीं कि
0: हाँ
1: इसमें कितने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां
0: जी,
1: हैं, तो लोग क्या, हाँ, वो दूसरे के गाए हुए वो जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
0: अच्छा,
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी, लता
0: हाँ
1: जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। कि अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी,
1: लोगों ने कहा कि अब तुम खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बन के इतने साल हुए, कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे
0: अच्छा
1: अनुभव एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या
0: जी
1: प्रोग्राम
0: जी
1: किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं काम। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा
0: अच्छा,
1: एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे,
0: हाँ,
1: तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला कि वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में। मेरी
0: अच्छा,
1: सब सहेलियां, मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ
0: ओहो
1: मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता है,
0: क्या बात है,
1: कुछ लिखा हुआ। कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया
1: तो
0: पर,
1: सोशल मीडिया पे,
0: ओहो
1: व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती
0: क्या
1: हूँ।
0: बात है,
1: हाँ, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो
0: हाँ
1: वो तुम्हारा करके गाती हो। वो
0: हाँ
1: प्रमिला दादा का गाना लगता है,
0: अच्छा,
1: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में, उन मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी, पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी
0: जी
1: पहले
0: जी
1: गाने,
0: जी
1: अभी नई आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक
0: हाँ
1: जाती है।
0: हाँ
1: तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा
0: बराबर
1: सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है इस
0: जी
1: क्लासिकल
0: जी
1: म्यूजिक का।
0: हाँ
1: तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो वो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये
0: जी
1: मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है, और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा, करीब करीब अभी मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके
0: ओहो
1: हारमोनियम पे सिर्फ
0: क्या बात है,
1: भेजे।
0: अच्छा
1: कभी कभी
0: अच्छा
1: अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके
0: जी
1: साथ
0: जी
1: गाए,
0: जी
1: लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, मजा आता है,
0: जी
1: मुझे भी
0: जी
1: अच्छा लगता
0: हाँ,
1: है।
0: तो इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो, ऐसा भी हुआ?
1: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका
0: अच्छा अच्छा
1: याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका याग्निक
0: हाँ,
1: का,
0: अच्छा,
1: मोह मोह के धागे,
0: मोमो के धागे, दम लगाकर है इस फिल्म का
1: दम लगा
0: गाना
1: के
0: है
1: है शायद
0: जी
1: उसका,
0: जी गीत
1: पता
0: लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
1: हाँ,
0: हारमोनियम पे,
1: मोह
0: तो
1: मोह के है। और
0: इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें
1: हाँ
0: प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: हैं, उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना
1: जरा से
0: है, ये
1: गाती थी
0: आपका हमेशा से रवैया रहा
1: या
0: है क्या?
1: नकल नहीं किसी
0: नकल
1: की,
0: किसी की नहीं,
1: नहीं
0: यानी मिमिक्री नहीं की आपने?
1: मिमिक्री नहीं,
0: अच्छा,
1: अपनी
0: हाँ
1: गीता
0: हाँ
1: दत्त के गाने बहुत मुझे
0: लेकिन
1: पसंद
0: आशा
1: हैं
0: जी का
1: गीता।
0: गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज
1: हाँ
0: में भी
1: वो
0: गाना
1: तो
0: है,
1: अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था।
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है,
0: हाँ
1: मतलब
0: हाँ
1: शब्दोच्चार
0: जी
1: या
0: जी
1: कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी
0: हाँ
1: उनकी तरह से,
0: जी,
1: तो वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप आ
1: नॉट
0: जाता।
1: नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो,
0: जी जी जी
1: क्योंकि
0: जी
1: इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट, क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं गाऊं,
0: बिल्कुल, वो
1: फिर
0: जिद का
1: ऊपर
0: कुछ,
1: जाके फिर वो
0: बिल्कुल
1: आवाज डबल हो जाएगी। उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में,
1: उसी रेंज में गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल। ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: हूं
0: अनुभव
1: क्योंकि
0: आप कह रही
1: आजकल वो
0: हैं।
1: जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी
1: आई
0: जी
1: हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, मैं भी गाता हूँ, ऐसा
0: हाँ
1: ऐसा
0: हाँ
1: नहीं होना
0: हाँ
1: चाहिए। कुछ सीखो, अच्छी तरह से तालीम
0: जी
1: पाओ,
0: जी
1: और इतना आसान नहीं है। नहीं तो एक
0: बिल्कुल
1: ही
0: बिल्कुल
1: लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी,
0: बिल्कुल
1: बहुत सारे
0: सही,
1: निकलते
0: बहुत
1: थे
0: सारे हो
1: गली
0: जाते
1: चौबड़े
0: हैं,
1: में
0: क्या बात है। तालीम बहुत ज़रूरी है,
1: जी,
0: क्लासिकल
1: बहुत ही
0: सीखना
1: बहुत
0: कितना
1: ही
0: ज़रूरी है आपको लगता है?
1: बहुत। पहले 3 4 5 साल तो फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक,
0: जी
1: लेकिन आवाज की तैयारी, फिर जो
0: हाँ
1: हरकतें मुरकुतें, फिर अपने गले से नहीं, तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज
0: हाँ
1: नॉट। अब
0: हाँ
1: मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, लेकिन ओरिजिनल उनका गा के फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है,
0: जी
1: जो
0: जी
1: वैरायटीज
0: हाँ
1: वो करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें
0: जी
1: मैं करती हूँ। लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो
1: वो
0: ओरिजिनल है
1: हिसाब
0: पहले वो तो
1: ओरिजिनल वो
0: गाओ।
1: तो गाओ,
0: हाँ
1: नकल न नहीं आती उसमें,
0: जी जी
1: लेकिन
0: जी
1: उसमें आवाज़ की तैयारी भी हो जाती है,
0: हाँ
1: और वो हिसाब से बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल,
1: आवाज़ अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता,
0: हाँ हाँ
1: ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं
0: खैर
1: अभी
0: बिल्कुल सही।
1: नहीं तो ये जो बड़ों बड़े जो उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी गंवाई तपस्या में,
0: जी
1: वो
0: जी
1: क्यों करते थे इतना,
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही गाते थे
0: सही बात, बिल्कुल
1: ना
0: सही। मन्नदा की बात करते हैं,
1: जी,
0: आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड
1: मन्नादा के
0: किया,
1: साथ कहा
0: संगीतकार थे श्री
1: श्री
0: रामचंद्र,
1: रामचंद्र।
0: तो मन्नादा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किए?
1: एक शो किया बड़ौदा में,
0: अच्छा
1: हाँ बड़ौदा
0: हाँ
1: में, मन्नादा ने मुझे एक मतलब एक उनको मैंने पूछी था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज़ में वो जो मॉड्यूलेशन होता है
0: हाँ हाँ
1: जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है,
0: जी।
1: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो
0: हाँ
1: फ्लैट लगेगा और उस
0: जी जी
1: भाव नहीं आएंगे उसमें,
0: हाँ
1: तो मेरी आवाज़ में नहीं था, किसी के आवाज़ में जाता होता है किसी के आवाज़ में, तो मैंने मन्ना दा को पूछा कि मन्ना दा ये कैसा लाने का अपनी आवाज़ में,
0: हाँ
1: तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें अच्छा ऐसे आघात

0: करते जाओ। अच्छा। और मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब रियाज करके।
1: क्या बात,
0: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला कि ज्यादा नहीं करना, लेकिन कंप होगा तेरे आवाज में। बहुत ही अच्छा। उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
1: जी जी,
0: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में,
1: जी जी,
0: बाम्बू चा वना च झ झ बहुत से, बाम्बू चा वना झऱ्या चा काठी, येशील सजणे सजने माझाच पाठी।
1: बिल्कुल, उनके लिए टंग ट्विस्टिंग
0: बहुत बहुत। तीन बार हुआ ठीक, चार बार हुआ इतने बार, या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा। अन्ना बोले डरो डरो डरो, मैं कुछ करता हूँ। तो उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं उनको बराबर लाइन में।
1: क्यों ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें,
0: हाउस ऑफ बैम्बू।
1: जी जी,
0: नंबर 54, द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर, नंबर 54 द दिस मॉड्यूलेशन, फोर द की उसके कम करना, उसके ज्यादा फोर्स में गाना, वो भी डिपेंड करता है।
1: जी जी जी,
0: नंबर 54 द हाउस ऑफ द बैम्बू डोर, हो बांबूचे घर बांबूचे दार, बांबूची जमीन पिवळी शार, बांबूचे घर बांबूचे दार, बांबूची जमीन पिवळी शार, बांबूच्या घरात आहा आहा, स्वप्नाचा झुला लला लला, झुलवित राहील पापा पापा तुला ने मला, नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर, नंबर 54 द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: उनका तो क्या,
1: वाह वाह। मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं।
0: जी जी जी,
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है।
0: हाँ।
1: मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए, जो लाइट कम और क्लासिकल ज्यादा लगते हैं, ऐसे उनके कई गाने हैं।
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे, क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं।
1: बहुत से,
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में, वो उस पे बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है। मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन।
1: वाह,
0: बहुत अच्छे, थोड़ा सुना था।

0: गाना।
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते, संगीतकार।
0: जी, प्रेमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको
1: जी
0: मंच पर गाने का मौका
1: जी
0: मिला
1: जी
0: है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ
1: रफी
0: आपकी
1: साहब तो
0: यादें।
1: मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट
0: अच्छा
1: कॉर्नर है। उनके
0: अच्छा
1: उनके साथ बहुत सारे टूर किए,
0: हाँ,
1: साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए
0: ओहो
1: रफी साहब के
0: क्या
1: साथ।
0: बात। हाँ
1: और जो उनसे सीखा है ना,
0: जी,
1: मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी।
0: ओहो
1: हाँ, इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव।
0: वाह
1: और उनको किसी ने सवाल पूछा, एक
0: जी,
1: पत्रकार परिषद थी,
0: हाँ,
1: कि आप गायक तो मतलब चोटी के हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है,
0: जी
1: लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमा दे?
0: जी
1: तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना,
0: हाँ,
1: उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और
0: ओ
1: क्या करूँ, और
0: क्या बात,
1: किसमें हाथ क्यों डालूँ मैं?
0: विनम्रता की हद है।
1: हद है, हद है।
0: ओ हो,
1: और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार। मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो
0: जी
1: मैंने
0: जी
1: वो
0: जी
1: कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है,
0: हाँ
1: तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें
0: हाँ
1: तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है,
0: जी,
1: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब, सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी
0: जी,
1: है
0: क्या बात, वाह वाह।
1: बहुत अच्छा
0: अब
1: लगा
0: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं,
1: जी।
0: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
1: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे
0: हाँ,
1: सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो
0: विक्टोरिया
1: मिल
0: नंबर
1: गए
0: दो
1: हो,
0: सौ तीन हाँ
1: हाँ,
0: जी, हाँ जी,
1: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो,
0: जी,
1: हाँ,
0: हंसते
1: हंसते
0: जख्म,
1: जख्म,
0: जी,
1: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: हंसते
1: और
0: जख्म फिल्म
1: हाँ
0: का, जी बिल्कुल वही सुनते हैं।

0: के जहां मिल गया।
1: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा?
2: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब भी उनके मिलने के बाद जहां ही मिल गया।
1: क्या बात है,
2: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग था।
1: क्या बात,
2: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है और 2 किडनी स्टोन की, उस वक्त के रेजर वेजर कुछ लाया था, स्टेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो। तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की, डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था, घर में सासू जी थी। लेकिन मैंने बोला नहीं अभी मैं टूर कैंसिल, क्योंकि ये सब अचानक आया। प्रीप्लान तो हमारा टूर था, तो बोला नहीं मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका। और बहुत जल्दी इत्तला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे, वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ। उस वक्त फोन भी ये भी कुछ नहीं था, तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे, तो ऐसे सब होके भी उन्होंने, ऐसे एक इंसिडेंस है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है।
1: मैं
2: दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कितनी भाग्यशाली आप हैं।
2: बहुत बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
1: जी जी, जी।
2: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कॉम्पिटिशन में भाग लिए, फिर प्रोग्राम शुरू किए, फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे कब साथ मिला, उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए। बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए
1: जी।
2: तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का, वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी चढ़कर, तो मेरा शुरू से लेके चढ़ता ही जा रहा है।
1: वाह वाह,
2: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
1: क्या बात, परिवार की बात चली है
2: जी।
1: तो आपकी अगली पीढ़ी में
2: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी।
1: अच्छा,
2: शो में शुरू से मतलब उन्होंने तब कुछ कि मेरा ही वक्त हुआ, मैं कंट्रोल्स कर रही हूँ।
1: अच्छा।
2: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना। अच्छा। वो छोटी थी दोनों। तो उनका जाते हैं उनके पास, मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
1: अच्छा।
2: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए।
1: बचपन से ही उन्होंने आपको गाते
2: उन्होंने
1: हुए
2: गाते देखा,
1: देखा
2: तो उन्होंने
1: तो वो
2: भी गाती
1: वो आप...
2: और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे नहीं कि कैसे क्यों आए ऐसे ऐसे नहीं। और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे।
1: क्या बात,
2: बड़ी बेटी एकदम, ए हमारी माँ है वो, हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं है।
1: क्या बात है, क्या बात, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
2: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
1: जी जी जी। अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा, आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा?
2: हाँ, हम लोग डुएट भी गाते थे
1: जी,
2: वो
1: जी।
2: मन क्यों बहका रे बहका वो है, फिर कजरा मोहब्बत वाला वो है, फिर अन्ना जी का अपलम चपलम उस पे डाल भी होता था मेरे शो में, ऐसे सब डुएट दो गाने हम लोग ने। तो वो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ आती रे। हाँ, फिर उसी शादी हो गई।

0: तो दूसरे ने लिया वो पंख
1: अच्छा
0: होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो
1: अच्छा
0: में,
1: अच्छा अच्छा
0: बहुत लोगों को पसंद
1: तो क्यों
0: आता
1: ना
0: था।
1: यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोताओं
0: अरे
1: को।
0: बाप रे
1: हाँ, रामलाल जी का कंपोजिशन है।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: ये है विविध भारती,
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफोन।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें,
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
8: सुनिए,
7: कहिए,
9: सुनिए एक खुशखबरी,
7: कहिए ना।
9: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा

पसंदीदा गानों की सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: आप सुन रहे
1: FM 101 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी भदरवाह से आपसे मुखातिब हैं। समाइन शाम के 5 बजे हैं। आइए सुनते हैं अमित काटल और साथियों की आवाजों में भदरवाही लोकगीत।

अभी आप समाप्त कर रहे थे भद्रवाही मौसीकी एफएम 101 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। पेश है किसान भाइयों का अपना और मनपसंद प्रोग्राम किसान वाणी।

0: वैभव जी जय हिंद। ते प्रोग्राम किसान वाणी सुनने वाले सभी किसान ला बहन बुजुर्ग जी भी जय हिंद।
1: जय हिंद सुषमा जी, देशे सुनने वाले किसान लान जो भी जय हिंद। और उम्मीद करता हूँ कि शे सब सुनने वाले खुश सेहतियाब और मस्त बोले।
0: जी।
1: तेरा आज जरूर थोड़ा जरूर तपश तेरी लियोरा हो रही है
0: जी।
1: ते लेकिन दिमाग में भी चली रहा और बहुत है कि मुझे थोड़ी जरूर बिलार गेरी ठंड बोई थोड़ी जरूर फुहार जरी पे तो शायद फिर दोबारा मैं दौर थोड़ी जरी स्वेटर जर न लानी पे। लेकिन खैर उन्हें लोर लगने की शायद जय मौसम गर्मा है तय जी उन्हें बिठाए में भी चले रहा और
0: जी।
1: हो नजर आ रहा सही जन अपने काम काज अंतर अभी तो कर नहीं और जंचरे होना किया सही यार तुम की कई किसान लाई गिरी जय थाल दितर थी किंचे बठेल और थी है किंचे मतलब कड़ कड़ में थाल तितर थी किंचे भिंडी पिपली वगैरह जन भी जन लोर थू तन हूँ ना तन उन जन तो अपने शुगार्डन में ले रहा और इन तो अपने चमना वगैरह छेल सारे तैयार के रहा और यार अभी जो चीज़ है वक्त से ही बदल छे
0: बिल्कुल
1: बदल छे कि जो कि यार क्योंकि ठंडो इलाकों ज़्यादा है अगर शहरम जाए थोड़ी जर बही है पास जो सालम बही है मतलब कि जैसे दूसरे सतंगलेर नैल्ठ रहे थनाल रे पास जो कहा थे थोड़ी ठंड ज़्यादा पहुँचे।
0: जी जी
1: लेकिन अगर अस ओंडी चुप गाम जन चौबीर पास जो गाम या ठोंडी लंगेर पास जो गाम ठीक है ना या जर जरे कंडी जो इलाका जर दोप छेल पे चीज जर फाट है जो इस वो है सरोल बागुरु फाट है एला में ही है या जिन तेरे पास भी आरम कुछ कुछ ज्यादा पे तो छेल दोप पे तो तेरे जरे किस फसला जल्दी अस समझो तुम भरने भी दिहाड़ी को लाने में फर्क रहते या उगने में फर्क रहते ते इस हिसाब से हूँ नज़र आ रहा हूँ नज़र असी जोड़ गुजर जाए अपने शुगाड़ की करनी है खासकर गोबर छाड़नो है हूँ नज़र अगर असी तस्मा असी रूनू है ते असी गोबर अच्छो आनो है और कोशिश लोड़ की रही कि हूँ नज़र असी जब शाड़रो गोबर है तो अस आनम जब पक्करो हुआ अच्छी तरह और तह अपने चमनन में शुगाड़न में मिलाम ते तहसी कौन बोते कि हूँ नज़र अगर तस छेल गोबर छाड़ ले और शर्रो छाड़ लेते तसी कौन बोते कि तस्मा अच्छी जो तस्मा खाद तस्मा तैयार पोचे पूरी पोचे तसी जैसी फसल ज़्यादा अच्छी पोचे और यार मैं सारी उम्र काम करते कलैली करते कि अस अच्छू खाम अच्छू अपना आप रखम अस तंदरुस्त रहम सेहतयाब रोम ते एन सारी चीज़ें के लिए अस जतरू अच्छू खा ले और अच्छू

0: खानेरले यार अकल चाहिँ तसल्ली तताली बोचे जताली अपने हथेमा चाहिँ उगोरी चिज बोचे अपने सामने बोचे र असन पतो बोते त तस चिज रो तस सेप्स रो किछ मजो या लग बोते यार उन नजर असन कसरोडे छे पतो कि केंचे नि उगोरी है कुदरती बईये दित रही है न इसमें केंचे खाद छट रही है न इसमें केंचे कोई स्प्रे की रही है न इसमें कोई इंजेक्शन लग करू है और असर स्वाद यार तुस्ते कतरो छेल बोते और शरीर ले कतरे लाभदायक चीज बोचे कुंडी कही असि पत्र से छेल इस बारी कुंडी बोई तन से साबे सी जन अस अपने शार शु गार्डन में जन अस लातम चाहे असी कड़म लाओ चाहे असी पिपली ले चाहे असी बाठे लाए चाहे असी कोई भी चीज लाए टमाटर लाए तन चीज जले असन पातो कि शेख शुगाड़ रे असी एपू पोरी न असी एपू है रिने पू तन चीज में शुद्धता पहुंचे और तस्मा असन पातो कि कोई स्प्रे नहीं है तस्मा कोई जतन वक्त कर पेले पकरी चीज नहीं है और जब शुद्ध चीज जले अस खा ले तन जैसा अन्न वैसा तन जरूर अस खा ले तेरे शरीर बोलो और अगर अस शुद्ध साफ चीजा खा ले तो इस शरीर भी शुद्ध रहा लो और साफ अच्छो तंदुरुस्त रहा लो और अगर अस ज्यादा अगर आरम की जन चीज आसन तो अगर अस अपने नौ पे सकम जन अस बाजार रान तम तन माँ भैस अच्छी चीजा भी बोन लेकिन माँ मन रे माने माँ शक रहा थे कि जाने जी जन अपने घर रू बोते तन लाट माटे के ना बोए लेकिन तस्मा आक से बोचे तस्मा आक मिठास अलग बोचे तस्मा आक असन अपनी खुशी बोचे कि यार जी अपने शुगार रू चाहे असन तब मुठड़ी बार के ना मिले लेकिन अपनी जब खुशी बोचे तसे भी मैं हरते कि नहीं असन खेई रहा रिम अशुद्ध खेई रहा रिम और जन अस काम करते जन धोनी जिसका अपने माल मवेशी है तस पातो क्या करो दूध दया नहीं रहा हो रही अपने बेचर हुए साफ है शुद्ध है इसमें कोई मिलावट नहीं बेची कोई इंजेक्शन नहीं ठीक है ना अस कोई भी चीज अपनी गौ नहीं लड़ देने खाने की तो चारने का तुम चारने का तुम तो तय नारो आरो घास खेरा हो रही है कोई गंद लिफाफे नहीं खेरा हो रही कोई ऐसी गंदी चीज छड़ी चीज नहीं ले रही खाने तो तसे अगर इस गोरू भी साफ मतलब स्वस्थ रह लो बीमारी तस ना बोली तो तसे दूध में भी आसन तह अच्छो पौष्टिक आहार जाए तो मिल लो तो इसी अगर जिंदगी छेल गुजली और बगैर बीमार के गुजली तंदुरुस्त गुजर ली और इसे बच्चे ऐसे तो उतरे अगर अच्छे हंसते खेड़ते रह ले खुश रह ले कोई बीमार ना बोले इसे बुजुर्ग ठीक रह ले तो अस्कर बड्डी जो तो ना नेमत कोई ना बोए अस्कर बड्डी तसल्ली कोई ना बोए तो लिहाजा हूँ नजर आसन का जन अपनी जमीन तनासी आबाद करनी इस मौसम में कोशिश लोड़े की रही कि ज्यादा का ज्यादा अपनी जमीन आबाद करम अगर जड़ी ना भी पुजोए ना तड़ी चल अस किछ ना करमा बूट हो ले छाड़म तभी असन दूट ले चोर साल पति किछ ना किछ तो दे लो चाहे किछ ना दे लो तो लकड़ी दे लो पटला दे लो तो जरूर किछ ना किछ असन छाव होई तो दे लो केंची पखेरू घर तो दे लो तो तन चीज कर जाए असे इस वक्त पर उपयोग लोड़े की रो असी कोशिश लोड़े की रही कि जतरी जमीन है तस अच्छे तरीके से आबाद करम
1: बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल जी तुसी ये बड़ी छेल गल जोई कि असी जमीन है तो बिल्कुल अपनी आबाद रखनी है ते यारा उन्हें तो असन बड़ी सहूलियत भी बेजू रही है कि जी उन्हें यारा पहले तो अस गोरु पालते थे यारा आज भी शे किसान ला पालता ना लेकिन यारा आजकल जैसे उन्हें इना जना डीजल आलू वगैरह और तो तेसरे शे किसान ला जाना तो दांत गाट रखता बेसी वगैरह रखता ना भी और गब्बा वगैरह रखता लेकिन यार तन करो असन बड़ो ज़्यादा बेनिफिट बहुत हो कि जी जन गोरु प्योर गोतम तन का तन करो शुकार बार है तो जमीनी से जुड़ रो पोते ना तने जमीनी में कम में इतने थी जमीन और अस असन घास निस्तो थू अस तंजे देते थी है ना अरे फिर तन करो गोबर जाए तो इस जमीनी में कम में इतो थू तसी इस जमीन सेहत भी ठीक रहा थी तो अजकल उन्हें किसान लाए गोरु पर पालना भी बड़ा घट के छड़ रन अस कुछ कुछ है तम कि कंचे कंचे बच्छी रख रही अपने थोड़े देर फायदे लिए अपने दुद्ध वगैरह लिए तो अपनी जमीनी में जाए तो अस ज्यादा खादा करो इस्तेमाल जाए तो के रहा रिम ते अगर अस खादा छड़ताम ज्यादा कर ज्यादा अपनी जमीनी में और भी कीटनाशक के अस छड़ताम दवाई कीड़े वगैरह मारने लिए तो फिर अस सारा कैंसर उम्मीद करम कि अस किसी छेल खा मिले है ना तो ले लें यार कोशिश करनी असें कि गोबर अगर बोए तो ज्यादा कर ज्यादा तरह इस्तेमाल करम अपनी जमीनी में ते खाद वगैरह जाए तो सर घट इस्तेमाल करम ताकि छेल फसल बने ते तंदुरुस्त अस रहा ते अपनी तंदुरुस्त लिए अपनी जमीन से असी जरूर जुड़न है जमीन जड़ी भी आई शीत असी तस में जरूर कोशिश करनी किछ ना किछ लाने री तन जमीन बड़ू किछ असन देचे भी साथ साथ ही यारा इसी आख कसरत भी बचे है ना अजकल अतरी दौड़ भाग जिंदगी में अपने लिए थोड़ा थोड़ा असन टाइम भी ना मिले ते अगर अस जमीनी में थोड़ा मतू कम करतम तो असी असन जन अस लातम तो सर तो फायदे बोते बोते साथ साथ ही आयशिया का एक्सरसाइज भी होगा जे अस तंदुरुस्त रहतम है ना साफ हवा खातम थोड़ी देर इसी एक्सरसाइज होगा जे सारी जिसमानी इसी तो कुदरती गल है अस उन चेर तंदुरुस्त है उन चेर अगर छेल अपनों गई तो खाम तो फिर तन चेर भी अस तंदुरुस्त है ना तेरे गल करो असी ध्यान रखनो तो अपनी जन भी अस छार छुकार लातम तो असी कोशिश करनी कि अपना देशी बीजा भी इस्तेमाल

0: फिर मेरा अजकाल उन्हीं दूसरे अजकाल किसान रा थाला दे रहा और दित्ते री बहन कहीं टमाटर बाठे यार पिपली ते कोशिश करम कि अस अपना देश बीजा भी रखम है
1: जी
0: ना। अस आके गल सोचतम कि असी हाइब्रिड बीज लानू बड़ी अच्छी गल है कि जी तन थोड़ी झाड़ ज़्यादा बचे लेकिन अपना देश बीजन जन तन अपनो स्वाद बोते तन अपनी एक खुशबू बोचे तन एक आसन खुशी बोचे कि यार ऐसी कोई देसी चीज़ मारी तस
1: बिल्कुल
0: खेर आ रही तेना ना दिले से असन खुशी बोचे तस दिले से तस चीज़ खातम तो ते ले लें अस हाइब्रिड बीजा भी लान शी किसान ला जना यार आजकल सिर्फ गिनता लातन लेकिन किचन का सैरतम के जो पुराना बीजा भी कहीं देसी रखो रो बोतन देसी कैकड़ी देसी टमाटर वगैरह देसी अपने मतलब जाने सब्जी तो तेना तनी रेखी बेचन तो तेना अगर लातन तन ते असी भी कोशिश करनी तेन रेजे रहे लेकिन जना बड़े पैमाने पर लातन है जना बेसन भी जने या कारोबार भी आए तो तेना हाइब्रिड जना सब्जी तो तेना ले सकतन लेकिन तेना भी कोशिश करन कि खाद करो घाट इस्तेमाल करन कि जी कि यार से बिगड़ सेहत बची अगर छेल तेना अपनी जै खाद वगैरह सटतन तो तेना तेन छेल जहाँ कोई सब्जी बन लेतन तो सीरी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा मिलचे है ना। ते असी ध्यान रखनो है अपनो भी ते होरी करो भी रखने की कोशिश करम तो ज़्यादा छेल गल
1: जी
0: ते अपनी जमीन जाए तो इंतना छम किस न किस तस्म लाम जमीन असन बड़ू किस देचे लेकिन असी तस पर मेहनत के लिए थोड़ी देर असन जरूरत पोचे ते
1: बिल्कुल
0: यार अशी बातचीत जाए तो जारी रह ली किसान लान भी अस बातचीत सुनातम ताकि तनका ज़्यादा कर ज़्यादा जानकारी पुजे ते ऐसे मकसद सी अज असी जाए तो गलबात की रही नैसडीएओ परानू आमिर रफीकी और ते अन सी कहतम गलबात ते अपने किसान लान भी सुनातम।
1: जी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान वाणी के लिए आज हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं अख्तर फारूकी सर हैं।
7: नहीं,
6: अख्तर फारूकी सर हैं, डिवीजन एग्रीकल्चर ऑफिस ऑफिसर परानू। सर, प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। सर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से टाइम टू टाइम कुछ पुरानी स्कीमें भी रिवाइज होती हैं और कुछ नई स्कीम्स भी फार्मर्स के बारे में बनाई जाती हैं, और कुछ को ज़रूरी होता है कि फार्मर्स को कन्वे करना पड़ता है उसके बारे में, या करंट जानकारी देनी पड़ती है। तो सर, हमारे फार्मर्स को जो लेटेस्ट आपके पास जानकारी जिनके बारे में आप देना चाहते हैं हमारे फार्मर्स को, जानकारी दे दीजिए। अलॉन्ग विद, चूँकि अब सोइंग सीज़न है तो उसमें अगर सीड्स के बारे में भी कुछ आप जानकारी देना चाहें, रेट्स या किस किस वैरायटी के सीड्स आपके पास अवेलेबल हैं, फार्मर्स को उसके बारे में क्या एडवाइजरी है, तो ये हमारे फार्मर्स को आप जानकारी दीजिए।
8: वेरी गुड मॉर्निंग, मैं SDO परानू आमिर रफीकी बोल रहा हूँ। मैं सब डिवीज़न परानू जो है, हमारी बहुत बड़ी सब डिवीज़न है, ये भदरवा से लेकर असर, कास्तीगढ़, घाट वगैरह का एरिया है, भरत, मरमत, ये सब हमारे पास जो है पड़ता है। में अभी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मैं बात करूँ पूरे, तो हमारे फ्लैगशिप स्कीम जो है HADP जो है, सारे तकरीबन जितने भी किसान भाई हैं उनके ग्रुप्स में रोज़ अपडेट्स आते हैं। जो हमारे AOs जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स जो हैं, हमारे 10 जोन हैं उनमें डालते हैं, डेली की अपडेट्स जो हैं उनमें जाती हैं। तो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम HADP के अलावा एक और प्रोग्राम चल रहा है JKSIP, जिसमें आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लास्ट ईयर का जो JKSIP का प्रोग्राम

0: बेनिफिट्स दे पाएं, और एरिया एक्सपेंशन में इनका रजिस्ट्रेशन जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक वो अपनी रजिस्ट्रेशन वहाँ पर नहीं कराएंगे तब तक वो जो है एरिया एक्सपेंशन में अपना फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारा एक जो आपने बोला कि जो अभी लेटेस्ट जो इस साल अभी जो सीज़न पे चलने वाला है, तो राजमाश की सोइंग जो है आने वाली है। मैं तमाम फार्मर्स से गुजारिश करूंगा, मेरे 10 जून हैं, उनके तमाम एओज ऑफिसेज आपके इर्द गिर्द हैं, हमारे केकेजी सेंटर्स हमारे जो खुले हुए हैं वो आपके इर्द गिर्द हैं, उन पर जाकर पूरी डिटेल्स जो है इस बारे में ले लीजिए और अपने आप को जो है रजिस्टर जो है कराइए, ताकि हम आपको टाइमली जो है इस स्कीम का बेनिफिट दे पाएँ। दूसरी बात मैं करूंगा कि हमारा जो सोइंग सीज़न चल रहा है और अभी आने वाला भी है, हमारा राजमाश और मेज़ का जो है सोइंग टाइम जो है आ चुका है। हमारे जितने भी स्टोर्स एग्रीकल्चर के हैं उन पर हमने एक एक जगह पर जो है सीड पहुंचाया हुआ है। नियर अबाउट 80% सीड जो है हमने अभी तक बेच दिया है, हमारे फार्मर्स को जो है सीड प्रोवाइड हो चुका है। अब उनसे ये गुजारिश है कि अगर कहीं भी आपको टेक्निकली हमारे स्टाफ की कहीं भी आपको लगता है कि ज़रूरत है, हमारे नंबर्स पोर्टल पर हैं, उन लोगों के ऑफिसेज आपके सामने हैं, आपके पास केकेजी हैं, केयूज़ जो काम करते हैं, कृषि उद्यमी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग काम कर रहे हैं और कुछ लोग अभी काम सीख रहे हैं, तो मेरी उनसे भी जो हमारे केयूज़ हजरात अगर इस मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप को फार्मर्स के लिए जो है ये सेंटर दिया गया है और उनकी फैसिलिटी के लिए ये रखा गया है, आप लोग फार्मर्स को अपने साथ जोड़िए, फार्मर्स की फार्म रजिस्ट्रेशन, दक्ष किसान है, पीएम किसान है, केसीसी के बारे में उनके बताइए, हेल्थ स्कीम्स के बारे में बताइए, क्रॉप की जो हम इंश्योरेंस करते हैं क्रॉप की उसके बारे में आप उन लोगों को समझाइए। हमारे एओज और हमारे फील्ड स्टाफ जो भी आपके पास आते हैं वो आपको टाइम टू टाइम जो सोइंग का टाइम है, कैसे आपने सो करना है, लाइन सोइंग करनी है, उसमें आपने कितनी जो मैन्यूवर देनी है, आप लोग जो हम फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ करते हैं खेतों में वो बंद कर दीजिए, अपनी खाद जो है बनाइए, हमारे पास मैन्यूवर्स बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे पास वो है, आप डिपार्टमेंट से उन चीज़ों को देखिए कि कौन कौन सी चीज़ उस ज़मीन के लिए अच्छी है। सॉयल हेल्थ कार्ड के बारे में मैं बताता हूँ, हमने सॉयल हेल्थ कार्ड जो है काफ़ी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, वो सॉयल हेल्थ के बारे में आप लोगों को देखना चाहिए कि हमारी ज़मीन की टेस्टिंग हुई है, उसमें कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में लगनी है, उतनी ही चीज़ दवाई या जो भी आपने मैन्यूवर उसमें देनी है उतनी ही लगाइए, ताकि आपकी फसल जो है बहुत अच्छी रहे इस साल। हमारी पूरी जो टीम है, मेरे SMS हजरात, 3 SMS हैं हमारे जोन में, सब डिवीज़न में, उनको जो है अपने अपने अलॉट किए गए हैं, तो उनसे भी अगर आप लोगों को रابطہ करना है, कभी भी कोई डिजीज आती है कुछ आता है, तो आप लोग जो है उनसे कांटेक्ट करके आपको पूरा टाइमली गाइड किया जाएगा। हमारे पास प्लांट डॉक्टर अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी फील्ड में ले जा सकते हैं कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है। तो फाइनली मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, डीपी स्कीम अभी भी 2 साल हमारे पास हैं, आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने उसमें जो है अप्लाई किया हुआ है, कहीं भी किसी को अप्लाई करने की ज़रूरत है आपके नियर अबाउट KKG में चले जाके वहाँ अपनी रजिस्ट्रेशन कराइए, जो भी आपको हमारे से सहायता चाहिए हम आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप लोगों के लिए, हम फार्मर्स के लिए हैं, अगर पहले फार्मर हैं तो फिर हम भी हैं, फार्मर्स हमारी बैकबोन है हमारे डिपार्टमेंट की। तो मैं हर फार्मर से रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि कहीं भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है आप हमारे पास आइए, हमारे पास HADP और JKSIP जो थे दोनों फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, इसमें अपने आप को रजिस्टर करिए और फ़ायदा उठाइए और अपने आप को अपनी इनकम जनरेशन जो है उसकी बारे में चले जाए, इनकम जनरेट करें। अनएम्प्लॉयमेंट यूथ अगर आपके पास इर्द गिर्द हैं उनको इस स्कीम के बारे में बताओ, उनको लॉगिन कराओ, उनको रजिस्टर कराओ, ताकि वो फ़ायदा उठाकर अपनी जो रोज़मर्रा की उनकी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करें।
1: सर जैसे चूंकि आपने राजमाश की बात की है और राजमाश को RDD GI टैग मिला हुआ है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे कि क्या जो लोकल हमारा भदरवाही राजमाश है तो उसका सीड अवेलेबल है, और अगर कहीं किसी इंडिविजुअल से परचेज करना है या डिपार्टमेंटली प्रोवाइड किया जा रहा है?
0: देखिए हमारे FPOs जो है, हमारी भदरवाही राजमाश जो है उन्होंने जो है बहुत मेहनत करके, और हमारे डिपार्टमेंट ने, हमारे कमिश्नर्स जो हैं, हमारे मिशन डायरेक्टर साहब जो

0: हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर जो हैं इन्होंने और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर हैं इन सब की मेहनत की वजह से है जो राजमाश को जीआई टैग मिला है। पूरे वर्ल्ड में जो है भदवाही राजमाश मशहूर है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी तमाम फार्मर से कि जो भी भदवाही राजमाश प्रोड्यूस करता है उसका सीड जो है अपने पास जरूर रखें। हमने लास्ट ईयर जो है 28 क्विंटल के नियर अबाउट राजमाश प्रोक्योर किया हुआ है। उसको हो हमने इस साल जो है अभी अलॉट किया है तमाम 10 जोनों में। हमने उन 10 जोनों को वो प्रोवाइड किया हुआ है। हमने क्विंटल के वाइज किलो के वाइज जो है मतलब जो केजी हमारा राजमाश है या क्विंटलों में जो है हमने हर सब डिवीजन जो मेरी है हर जोन को जो है वो प्रोवाइड किया है एरिया एक्सपेंशन के लिए। एरिया एक्सपेंशन में आपको सिंपल वर्ड में समझाऊंगा कि अगर मेरे पास 10 कनाल जमीन है मैं 4 कनाल में लगाता था राजमाश, अब मुझे 8 कनाल में लगानी है
1: जी
0: तो उसको एरिया एक्सपेंशन कहते हैं। तो हमने उन फार्मर्स को जोड़ना है वो फार्मर आगे आए जिन्होंने अभी तक राजमाश प्रोड्यूस नहीं की है राजमाश नहीं लगाते हैं उनके लिए हमने अभी जो राजमा प्रोक्योर की थी अभी हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। उनको पूरी टेक्निकल गाइडेंस मिलेगी। हमारे एसएमएस हजरात हैं हमारे एओज हैं हमारा फील्ड स्टाफ है पूरी टेक्निकली उनको समझाएंगे राजमाश को हमने बढ़ावा कैसे देना है और इस राजमा जो भदवाही राजमाश है इसका सीड बढ़ाने के लिए जो है हमने एरिया एक्सपेंशन में देना है। और हम तैयारी कर रहे हैं हमने 2 सीड विलेज बनाने की कोशिश की जिसमें 114 कनाल का सीड विलेज होता है। हमने उसको बनाने के लिए भी जो है मेरे एसएमएस हजरात और एओज को लगा के रखा हुआ है। हम आइडेंटिफाई विद इन 2 या 3 डेज कर लेंगे कि कौन सा सीड विलेज हमने किस गाँव में बनाना है ताकि उस सीड विलेज को बना के हम उसी से भदवाही राजमाश का सीड जो है निकाल के बाकी जो जगहें हैं उस जगह जो है सीड जो है हम प्रोवाइड करें ताकि भदवाही राजमाश का बढ़ावा जो है और उसकी प्रोडक्शन बढ़ती रहे।
1: सर, जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है तो हम पीछे से देख रहे हैं इसमें कि पहले बहुत अच्छी पैदावार होती थी और कुछ कुछ चीज़ की डिफिशेंसी है या फार्मर्स की उस पर इंटरेस्ट ना होना उसकी प्रोडक्शन घटी है। इस पर थोड़ा सा बताएंगे कि फार्मर्स क्या करेंगे जिससे हमारा क्वालिटी राजमाश भी बढ़े और क्वांटिटी में भी बढ़े।
0: देखिए मैंने तभी बताया कि सीड विलेज का होना बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है कि जो फार्मर्स पहले ओल्ड फार्मर्स जो है जिन्होंने इस सीड को अब तक बचाए रखा है हमने एफपीओज बनाए हैं। आप एफपीओज के साथ जुड़िए हमारे केकेजी सेंटर्स हैं वहां पे आप रजिस्टर कर सकते हैं जेके सिप में राजमाश में। हमारा एचएडीपी का प्रोग्राम है नीश क्रॉप उसमें आप अपने आप को जोड़िए रजिस्टर कीजिए ताकि आपको ओरिजिनल सीड जो हम लोगों ने लास्ट ईयर प्रोक्योर किया है वो आप तक पहुंचे और उस सीड से जो है आगे जो है हमारी जो यील्ड है वो बढ़े ताकि इस राजमाश का प्रोडक्शन जो है पीछे जो है कम हुआ वो बारिशों की वजह से कम हुआ। एक्सेस बारिशें पड़ी और जब हमने फसल निकालनी थी राजमाश की उस टाइम इतनी बारिश पड़ी और सारी वो फसल जो है उसमें खराब हो गई। फसल वो हमारी बदकिस्मती रही है। कोविड के टाइम पर भी काफी नुकसान उठाना पड़ा फार्मर को जो पीछे 2 साल से कंटिन्यूअसली जो टाइम पे बारिश पड़ नहीं रही है उससे काफी ड्राट रहा बीच में। अब जब दूसरा सीजन आया तब हमारी राजमाश बल्क में तैयार थी बट उस टाइम जो है फ्लड्स आए वो रेन इतनी हुई कि अब हम लोग उसको बचा नहीं पाए क्योंकि अभी राजमाश का लास्ट स्टेज भी थी उसको फंगस लग गया तो काफी नुकसान उससे भी हुआ। वो भी प्रोडक्शन का एक जरिया था कि प्रोडक्शन बढ़ गई बट उस टाइम जो है घट गई। तो हमने इस राजमाश को जो प्रोक्योर किया है बड़ी सोच समझकर हमने 3-4 जोनों से जो है राजमाश को प्रोक्योर किया था। इस साल हम उस राजमाश को एक्सपेंड कर रहे हैं एरिया एक्सपेंशन में डाल रहे हैं। हमारे एसएमएस और हमारे डायरेक्टरेट से जो भी गाइडलाइंस हमें मिली हैं हम उसी के तहत जो है इन फार्मर्स को जो है जिनको दे रहे हैं उनको समझाएंगे लाइन सोइंग के बारे में टाइमली सोइंग के बारे में टाइमली होइंग के बारे में और टाइमली जो हमने इसको काटना है इसको कैसे पैकेज करनी है। पैकेज हमने जो है पैक करने में जो राजमाश को हमने एफपीओज जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी ब्रांडिंग कैसे होगी उनकी पैकिंग कैसे होगी। जीआई टैग जो मिला है आप अपनी राजमाश जो है फार्मर्स को दे सकते हैं। हमारी लास्ट ईयर का जो फार्मर से लेने का रेट जो है 320 रुपये रहा तो 320 रुपये आज की डेट में राजमाश मार्केट में किलो थी जो कि 100 रुपये किलो मिलती थी। ये सारा जो है जीआई टैग की वजह से है और फार्मर्स की जो अपनी मेहनत है वो उनके सामने है।
1: सर, आपने प्रोग्राम के लिए टाइम दिया और उम्मीद है कि इस साल हमारा अगर कोई नेचुरल कलमिटीज़ नहीं हुई तो अच्छा राजमाश निकलेगा और सीड जितना आपने डिस्ट्रीब्यूट किया।

0: है तो एक्सपेक्टेड क्वांटिटी में हमको क्रॉप भी अवेलेबल होगी। आपने प्रोग्राम के लिए टाइम दिया, बहुत बहुत
1: सुषमा जी हरा सही गलबात सुनी ते मैंने बड़ी अच्छी तफसील जानकारी भी दी और एपी जो कि कैंसर कैंसर जाना फॉर्म भरी सकतन कि एच डी पी जाना प्रोग्राम बाकी जाना स्कीम करन को फायदों की नहीं सकतन और इसी गल थी कि तुसी गल सही रही थी तो लिखे रहा जन चरा सी देशी बीजा की भी गल की थी तो और बिल्कुल दस गल ही पढ़ो सोच रहा और तो कि यार वक्त है बहुत थी कि पहले अस निकला रहे थे पिटी पिटी कैकड़ी बहुत थी देशी कहना बेरोरा कैली कैली जेरी तो इतना मज़ेदार बोझे इतनी बेटी बेटी मेरे ख्याल शायद किलो में आँख के या दूई जेरती थी
2: जी
1: तो तन को आलू के स्वाद बहुत थी और
2: खुशबू
1: खुशबू तस्मा बहुत थी
2: जी
1: कैकड़ी खुशबू दूर रही जी गात थी
2: जी जी जी
1: तय चीज़ होनी शायद न ली होए या बोली भी तो होनी बड़े घाट ठहरन रहा हो रही है
2: जी
1: तो इसके अलावा देशी अंडे बहुत थी है देशी कुकड़ा बहुत थी है तना भी होनी समझ लगभग विलुप्तन तो इसके अलावा देशी अगर अस गल कर मेरा हूं अभी सैरतम कि जब बाजार रहा कड़म इतने
2: जी
1: जै जै मेरे पास रे इतने छेतो जोर कड़म तो अस ना सुखाम लेकिन जै जै ही तो जल अपनो देशी लगते तो इसमें क्या मिठास इच और इसमें क्या स्वाद इतने और अस तला अस तक उजरोम ना मतलब भटला इज ओतन की लोग जोतन की ना भटला इजन कड़मे का दिन उजरोम तो तय हिसाब है कि जै इसी देशी चीज़ चाहे देशी एलवन देशी बठे हैं देशी पिपली हैं जन भी आए लेकिन तस चीज में आक तहते हूँ कि तन तन 20-21 साल और 2 साल करनो थू तन कई सदियाँ करूँ इसे बुजुर्ग इस जमीन पर इस मौसम में लाते और थी है और तस इस मौसम के हिसाब से ही इस ठहर के हिसाब से ही बिल्कुल फिट थू जन सर किसी देशी बेची बहुत थी हूँ अभी आ रहा तो आज अर्थमासन का दूध ज़्यादा बहुत है लेकिन आज क्या था क्वालिटी ऑफ दूध है कि जो कि असी अगर नवी चीज़ें चलाए नहीं इनकी जो कि यार आबादी बेदीरा हो रही है जमीन घटी रहा हो रही है असी नवी चीज़न करो इस्तेमाल करनो इसे लिए लाजमी है लेकिन असी यह भी कोशिश लोड़े की रही चीज़ है इशो ये मतलब शुगाड़ है या इशो असन का माल मवेशी है जैसे देशी नस्ल है तभी असी बचानी तभी इसी जिम्मेवारी है कि जो कि यार अगर अस जो कि अस हिंदुस्तानी हम तो असन पर अंग्रेजी हुकूमत की तो असी तेना घाटे तस्पत भी अस देशी लोग रहा है ना तो देशी जै आए तो जस ठहर रो है जै जस वातावरण में पल रो बढ़ रो है जै तसेरी खुराक है जस मित्र तस्मा गुण है तय चीज़ जै है तय संभालनी तब प्रिजर्व करनी बड़ी जरूरी यार अक चीज़ और बड़ी छे देशी याद आई अस कोई भी तो सारा जना बिठलाई भी अगर कोई जना बेरो बासरन तन उस दिन हाँ जी चाहिए आन हाँ जी आन नहीं देशी अमरी आए
2: जी
1: तो देशी अमरी सिर्फ सुनने में इच्छे तो ली हो थी ना
2: जी
1: या बोली भी कैंची का तो शायद है कैंची का बोली तो एक वरायटी बड़ी है लेकिन हूं अभी लोग तो अपन कितना देशी अमरिया है अच्छा इन एलो अच्छा देशी एलो है
2: जी
1: अच्छा ये काकड़ी अच्छा देशी काकड़ी है
2: जी
1: तेरा देशी असन साथ ही जुड़ रू है लेकिन क्या देशी अस ले रहा हो रेम अगर अगर ले रहा हो रेम कि अगर नहीं कई बार अस ऐतम स्थल देतम या अस लौं तो छेल लान लागू तो इसमें तेरी बाढ़ ना निस्सी तो मैं सोचते यार ऐसा ले रहा हूँ लेकिन इसमें निस्सी किश नहीं रहा हूँ लेकिन शायद तो इसे व्यवहार में इसे तसेर इस्तेमाल है माँ शायद फर्क है जिगा ते तो तेरे तस्मा जाए अच्छी तह चीज़ उपज न निस्से ते
2: बिल्कुल जी
1: सुषमा जी इसी जै गलबात बहुत ही अच्छे थे असमा से अपने किसान लान जक नसीहत भी देते तेरा आज जैसे अपने किसान लान जै नसीहत देनी है तह लैली की तय अपने जना जै अपने जना इश्तन की फसल है तस लगातार तस नज़र रखा करन कि जो कि यार मौसम बदलने से कई किस्म की बीमारी है चिन कोई तस्मा प्रॉब्लम है जी गए तो तलैले जै है किसान लाई अपने जै फसल है तसेरो छेल सारे जाए तसेरो नजर गुजर रखे लोड़े और अगर कोई भी तस्मत अनन बीमारी गुन ले होते कि इसमें कोई बीमारी अजीरा हो रही है तो तसेरो जाए उपचार जाए वक्त पर कीरो लोड़े तो उन्हें चलते चलते गल करम कालर मौसमेरी है काला 10 तरीक है
2: जी
1: काले मौसम की गल करम तो काला ज्यादा का ज्यादा दर्जे रहा 27 डिग्री रहने रो अनुमान है और घट्टे का घट जा है 12 डिग्री रह सकते तो मतलब कुल मिले तो मौसम गर्म है अजर जर तो अच्छो मौसम है और इस फायदा अगर असल हम अपने जन काम काज तन कर सकते हम तो सुषमा जी ऐसे साथी से प्रोग्राम रो वक्त भी मुकम्मल बोते अपने किसान लांग आज्ञा गिनतम
2: जय
1: जय
2: हिंद।
1: हिंद।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश

एफएम 101 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी बदरवा से आपसे मुखातिब हैं। समय शाम के 6:10 हुए हैं। पेश आपसे लेकर रात 10 बजे तक रिलेवा नशर किए जाने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी ठीक 6:15 पर आकाशवाणी जम्मू से डोगरी में खबरें व तबसरा रिले किया जाएगा। पर आप समाप्त करेंगे फिल्मी नगमे। सात बजे हालात हाजरा पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन। 7:30 पर कश्मीरी में खबरें। 7:40 पर उर्दू में खबरें। 8 बजे वादी के हाउस प्रोग्राम आकाशवाणी श्रीनगर से रिले किया जाएगा। पर आप समाप्त करेंगे सराजी मौसिकी। पर समाचार संध्या। 9 बजे न्यूज एट 9। 9:15 पर उर्दू में खबरें आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। 9:30 पर आप समाप्त करेंगे पुरानी फिल्मी नगमे। 10 बजे तक रिलेवा नश किए जाने वाले प्रोग्रामों का खुलासा। हम आकाशवाणी बदरवा से आपसे मुखातिब हैं एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय

0: एह् आकाशवाणी जम्मू ऐ। संझा खबरें च तुंदा स्वागत। पैहले खास खास खबरें कन्नै मैं कुणाल श्रीवत्स। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान दे तैह्त अनंतनाग च पदयात्रा च हिस्सा लैता ते लोकें गी नशे खिलाफ लड़ाई च आवाज बुलंद करने दी गुजारिश कीती। केंद्री मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें जम्मू कश्मीर च लवेंडर अर्थव्यवस्था गी बढ़ावा देने लेई सीएसआईआर आसिया मुंबई च आयोजित खरीदने बेचने आह्लें दे इक सम्मेलन दा वर्चुअल ढंगे नै उद्घाटन कीता। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि होरें गी देशै दा नमां सीडीएस नियुक्त कीता गेआ ऐ। ओह 3 मई थमां कार्यभार सांभगन। जम्मू खित्ते च पहली पूरी चाली डिजिटल मरदमशुमारी 2027 लेई तैयारियां जोरें शोरें जारी न। आपूं अपनी गिनतरी आली प्रक्रिया 17 मई थमां शुरू होग। ते मौसम विभाग ने कल्लै थमां प्रदेश च मौसम बदलोखड़ा रौह्ने, बरखा गरज चमक ते अंधी झक्खड़ की भविक्खवाणी कीती ऐ। हुन खबरें की तफसील कन्नै विजय बजाज।
1: शुक्रिया कुणाल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान दे तैह्त अनंतनाग च अज्ज इक पद यात्रा च हिस्सा लैता ते लोकें दे किट्ठ अग्गे भाषण बी दित्ता। उनें लोकें गी अपील कीती जे ओह् नशे दी कबैतू खलाफ आवाज बुलंद करदे होई नशे खलाफ जंग च इकजुट होई जान। एलजी होरें आखेआ जे नशे दी कबैतू दा पूरी चाल्ली खात्मा उसलै गै मुमकन ऐ जिसलै पूरा समाज एह्दे खलाफ इकजुट होई जा। श्री सिन्हा होरें जोर देइयै आखेआ जे हुनै थमां प्रदेश दे हर इक कोने, भामें स्कूल, कॉलेज, परोआर, खेड़ दे मैदान, वार्ड, ग्रां जां फ्ही थिएटर मंच गै की नेईं होन, उत्थुआं नशे दे खलाफ मजबूत धेइयै कन्नै आवाज पक्क गै बुलंद होनी लोड़चदी ऐ। एलजी होरें आखेआ,
2: घर का कोई सदस्य हो या पड़ोस का कोई नौजवान अगर भटक रहा है तो उसे प्यार से सुधार की राह पर लाने की कोशिश हमें मिलकर करनी होगी और एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह आपके साथ खड़ा मिलेगा। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की नहीं, ये लड़ाई हम सबकी है। ये दिमाग नहीं जागेंगे तो आने वाली नस्लें शायद हमें माफ नहीं करेंगी। आइए हम आज अनंतनाग की जमीन से सब मिलकर एक वादा करते हैं कि हम अपने गाँव, अपने मोहल्ले में किसी भी ब्लड पड़लर को पनपने नहीं देंगे।
1: तोआई नशे दी कवैतू खिलाफ जम्मू खित्ते च भी जतन तेजिया कन्नै जारी न। पुंछ दे जिला इंतजामिया ने समाज कल्याण विभाग कन्नै रलियै नशा मुक्त समाज गी बढ़ावा देने लेई इक बाइक रैली दा सरिस्ता कीता। खरी मती गिनतरी च युवा स्वयं सेवियें, विद्यार्थियें, सिविल समाज दे सदस्यें ते अधिकारियें कर्मचारियें भी एह्दे च हिस्सा लैता। एह् रैली बक्ख बक्ख इलाकें च होइयै लंघी ते प्रतिभागियें लोकें गी नशे दी कवैतू खिलाफ जागरूक कीता। इस बारे होर जानकारी कन्नै पुंछ दे डिप्टी कमिश्नर अशोक कुमार शर्मा।
3: नशा मुक्त अभियान चल रहा है, उसके तहत आज जो है बाइक रैली जो निकाली जा रही है मिश्रण एरिया से होते हुए निकलेगी और मेन मकसद जो है लोगों को अवेयर करना है कि ड्रग्स से दूर रहें, से यस टू लाइफ एंड नो टू ड्रग्स।
1: केंद्री मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें औंदे लवेंडर उत्सव 2026 कोला पैहले मुंबई दे सीएसआईआर इनोवेशन कंपलैक्स च सीएसआईआर ट्रिपल आईएम जम्मू आसिया आयोजित खरीददारें ते समेयान बेचने आह्लें दे इक सम्मेलन दा वर्चुअल ढंगै नै उद्घाटन कीता। इक ध्याड़े दे एरोमा उद्योग ते करसान सम्मेलन ने लवेंडर कन्नै जुड़े दे करसानें, स्टार्टअप्स, उद्यमियें, साइंसदानें ते जम्मू कश्मीर दे बक्ख बक्ख हिस्सें, खास करियै भद्रवाह दे बड्डे ते अगुआ एरो

0: फार्मा दे इत्र उद्योगें गी इक सांझे मंच पर आनियां ऐ। एह्दा मकसद बजारी सरबंधें गी मजबूत करना, उत्पादें दी गुणवत्ता च सुधार करना ते इलाके लेई लवेंडर आधारित इक टिकाऊ अर्थव्यवस्था दा निर्माण करना भी ऐ। इस मौके पर लोकें गी संबोधित करदे होई डॉ जितेंद्र सिंह होरें इस आयोजन लेई CSIR IIIM जम्मू दे डायरेक्टर डॉ जबीर अहमद ते उंदी टीम दी बड़ी मती सराहना कीती ते आखेआ जे एह पहल जम्मू कश्मीर च CSIR एरोमा मिशन ते पर्पल रेवोल्यूशन दी बधदी कामयाबी गी दर्शांदी ऐ। सरकारै लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी होरें गी अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नियुक्त कीता ऐ। रक्षा मंत्रालय ने आखेआ जे लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी कार्यभार सांभने दी तरीक थमां अगले हुक्मै तोड़ी फौजी मामलें सरबंधी विभाग दे सचिव दे तौरै पर भी कम्म करङन। ओह आउंदी 3 मई गी जनरल अनिल चौहान हुंदा कार्यकाल पूरा होने दे बाद अपना कार्यभार सांभङन। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी चाऊं दा किशा मते दी शानदार सेवा देने आले इक बड़े सम्मानित फौजी अधिकारी न। ओह मौजूदा समें च सितंबर 2025 थमां राष्ट्री सुरक्षा कौंसल सैक्रेटरेट च फौजी सलाहकार दे तौर पर अपनियां सेवां देआरदे न। एह्दे शा पैह्ले ओह आर्मी स्टाफ दे उप प्रमुख ते सेंट्रल कमान ते जनरल आफिसर कमांडिंग इन चीफ दे तौर पर भी अपनी सेवां देई चुके दे न। एह्दे अलावा उनें पच्छमी ते उत्तरी मोर्चें पर भी बड़ी खरी चाली अपनी जिम्मेदारियें गी अंजाम दित्ते दा ऐ। एह खबरां साढ़ी वैबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध न। एह्दे अलावा तुस एह खबरां आकाशवाणी दे मोबाइल एप्लीकेशन ते DTH पर भी सुनी सकदे हो। एह खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू थमां सुनारदे हो। हुन बाकी दियें खबरें कन्नै कुणाल श्रीवत्स।
1: जम्मू खित्ते दे बक्ख-बक्ख जिलें च औंदी मरदमशुमारी आस्तै तैयारियां तेज होई गेईयां न। एह मरदमशुमारी पहली बारी पूरी चाली डिजिटल तरीके कन्नै कीती जाग। बक्ख-बक्ख जिलें दे बसनीक हून सरकारी मरदमशुमारी पोर्टल राएं अपने घरें दे ब्यौरे गी आनलाइन दर्ज करवाई सकदे न। 17 मई थमां ओह परिवार दे सदस्य घरें ते समाजी आर्थिक स्थिति बारे जानकारी दर्ज करवाई सकदे न, जिसी मगरा मरदमशुमारी करने आले अमले आसेआ सत्यापित कीता जाग। अधिकारियें सब्भनें गी इस गल्लै पर जोर दिंदे होई सक्रियता कन्नै हिस्सा लैने दी अपील कीती ऐ जे समूलचे जम्मू खित्ते च विकास योजनाएं ते कल्याणकारी स्कीमें लेई सही आंकड़े किट्ठे करना बड़ा गै जरूरी ऐ। इस बारे आकाशवाणी समाचार गी जानकारी दिंदे होई उधमपुर दे DC मिंगा शेरपा होरें आख्या,
2: ये पहला सेंसस है जो डिजिटल सेंसस होगा और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है कि पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फैसिलिटी दी है आम नागरिक को कि वो अपनी प्री रजिस्ट्रेशन जो कि अपने डिटेल्स ऑनलाइन माध्यम से पोर्टल में अपलोड कर सकता है। इसकी तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल हो चुकी है। इस महीने के 17 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जितने भी हमारे उधमपुर के सिटीजन्स हैं वो ऑनलाइन जो हमारे सेंसस के पोर्टल में जाके अपनी डिटेल्स जैसे कि उनका घर किस प्रकार का है, घर कितने एरिया में है, घर में कितने लोग रहते हैं, उनके पास क्या लैंड होल्डिंग है, उनके पास क्या डिटेल्स हैं, वो सारी डिटेल्स इस पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं।
1: रामबन दे जिला उद्योगिक केंद्र आसिया नौजवानों का दिल बधाया जा रहा है जे ओ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ते MSME जनेही योजनाएं का लाभ उठाइए आत्मनिर्भर बनन। DIC रामबन आसिया मकामी नौजवानों ते उद्यमियों लिए कार्यशालाएं ते जागरूकता कैंपें का आयोजन किया जा रहा है ता जे उन्दे अंदर स्वरोजगार ते कौशल विकास आली भावनाएं गी बल दिता जा सके। महकमे आसिया लोके उद्योगें सने दस्तकारी खेत्र ते सेवाएं सरबंधी खेत्र गी भी बढ़ावा दिता जा रहा है ता जे नौजवान नौकरियां मंगने आले बनने दे बजाय होरने गी काम रोजगार देने योग बनी सकन। इस बारे और ब्यौरे सांझे करारदे न DIC रामबन दे जनरल मैनेजर रविंदर कुमार।
3: PM विश्वकर्मा के तहत और MSME हेल्थ क्लीनिंग के कैंप जो है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन में हम ऑर्गेनाइज किए हैं और भी बाकी जगह जो हमारे रूटीन में कैंप होते रहते हैं वो हम जो है वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। इसके अलावा जो PMGP के रूटीन में जो भी यंग जनरेशन है वो अगर लोन लेना चाहती है तो हम उसको लोन प्रोवाइड करते हैं सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। तो इसके अलावा जो है वो PM विश्वकर्मा जो है वो भी स्कीम हमारी चल रही है।
1: भारतीय क्रिकेट टीम दे मुख कोच गौतम गंभीर होरें अपने परिवार सने श्री माता वैष्णो देवी जी उंदी पवित्र गुफा च मत्था टेकिए मां भगवती हुंदा आशीर्वाद लैता। साढ़े जिला संवाददाता ने जानकारी दिती है जे सख्त सुरक्षा हेठ गंभीर होरें शांति खुशहाली ते भारतीय क्रिकेट टीम दी लगातार कामयाबी लेई प्रार्थना कीती। भारत दे साबका सलामी बल्लेबाज गंभीर हुंदा मंदर दे अधिकारियें गर्मजोशी कन्नै स्वागत कीता ते रस्ते च खड़ोते दे श्रद्धालुएं भी क्रिकेट दी दुनिया दी इस बड्डी शख्सियत गी दिखिए उत्साह जाहिर कीता। मते सारे श्रद्धालुएं इस पल गी कैमरे च कैद कीता ते उंदे कन्नै गर्मजोशी कन्नै गल्लबात भी कीती।

0: नतोरे बारे मीडिया कर्मियों कन्ने गलबात करदे होई गौतम गंभीर होरें आख्या,
1: नहीं माता रानी ने बुलाया दर्शन के लिए तो उससे अच्छी क्या मेरा सौभाग्य हो सकता है, तो माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और मुझ पे क्या सारे देश पे बना रहे, सब पे बना रहे।
0: मौसम विभाग ने अजे तक आमतौर पर मौसम के खुश्क रोने की पेशनगोई की है। उआं 10 शा 12 मई मौसम के बदलोखड़ा रोने की उम्मीद है। इस दौरान कई थारें पर हल्की बरखा ते अंधी झखड़ झुलने का अनुमान है। मौसम बारे और मती जानकारी कन्ने मुतलका विभाग के निदेशक मुख्तार अहमद,
2: लगभग 10 दोपहर तक जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांस हैं और आने वाले दिनों में भी खासकर 10 11 12 के आसपास मौसम फिर से थोड़ा सा क्लाउडी है, हल्की फुल्की बारिशें बीच बीच में ब्रीफ पीरियड के लिए, कोई कंटिन्यूस रेन नहीं है फिलहाल, कोई मेजर स्पेल नहीं है लगभग 15 मई तक, तो ताजा लैंडस्लाइड्स के चांस फिर से हैं खासकर ऋषिक रियासी उधमपुर रामबन, तो थोड़ा एहतियात करें और हाईवे स्टेटस जरूर जाने एक बार ट्रेवल करने।
3: अखीर च खास खास खबर एक बारी पड़ती है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान दे तैहत अनंतनाग च पदयात्रा च हिस्सा लैता ते लोकें गी नशे खिलाफ लड़ाई च आवाज बुलंद करने दी गुजारिश कीती। केंद्री मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह होरें जम्मू कश्मीर च लेवेंडर आधारित अर्थव्यवस्था गी बढ़ावा देने लई सीएसआईआर आसिया मुंबई च आयोजित खरीदने बेचने आह्लें दे इक सम्मेलन दा वर्चुअल ढंगा नै उद्घाटन कीता। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी होरें गी देशै दा नमां सीडीएस नियुक्त कीता गेआ। ओह 30 मई थमां कार्यभार सांभगन। जम्मू खित्ते च पहली पूरी चाली डिजिटल मर्दमशुमारी 2027 लई तैयारियां जोरें शोरें जारी न। आपूं अपनी गिनतरी आली प्रक्रिया 17 मई थमां शुरू होग ते मौसम विभाग ने कल्लै थमां प्रदेश च मौसम बदलोखड़ा रौहने, बरखा बरने, गरज चमक ते अंधी झखड़ झुलने दी भविक्खवाणी भी कीती है। एदे कन्ने गै खबरें दा एह बुलेटिन समाप्त होगा।
4: आओ करचै गल गवांढियें दी। बेले सिर नमाज ते बेबेलियां टकरां, एह ते इस चाली दे होर केईं खुआन साढ़े गवांढी मुल्क पाकिस्तान पर भलियां सही बनकदे न कि जे समें सिर लोड़चदे हीले नहीं करने ने जेड़ा नुकसान ते पछतावा हुंदा ही है, पाकिस्तान ओदी जींदी जागदी मिसाल है। देश चलाने दी सोच मनशा ते करतूत नहीं होने दे कारण अज उत्थों दे हुक्मराने दी नलैकी ते बदनीयती दे कारण आम नागरिकें गी केईं चाली दियें दिक्कतें, परेशानियें ते तकलीफें दा सामना करना पवा करदा है ते इनें परेशानियें चा इक है सेहत। आखदे ना कि जेकर सेहत है तां सब किश है, नरोई सेहत गी ज़ार नियामतें दे बरोबर मन्या जांदा है, पर पाकिस्तान च इनें दिनें सभनें दी सेहत पर बड़ा भारा संकट बने दा है कि जे उत्थें दवाइयें दा जबरदस्त त्रोड़ा है जिंदे च एंटीबायोटिक, शुगर, कैंसर ते दिलै सरबंधी बीमारियें दियां दवाइयां भी शामल न। इत्थै भी गलती ते गलत नीति सरकार दी गै जिम्मेदार है। जरूरी दवाइयें पर 18% सेल टैक्स लाने करी दवाइयें दी उत्पादन लागत बधी गेदी है। दवाइयें दी कमी दे चलदे जमाखोरी ते कालाबाजारी भी बधा करदी है। लोकें गी दूने त्रीने भाएं पर दवाइयां ब्लैक च खरीदनियां पवा करदियां न। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जनेह बड्डे ते प्रमुख शहरें च भी दवाइयां नेईं थ्होआ। मरीजें दा ऑपरेशन करने कोला पैह्लें एनिस्थीसिया यानी बेहोश करने दी दुआ तगर अस्पतालें च दस्तयाब नहीं है। ताज़ा रिपोर्टें दी जेकर मनचै तां 2023 कोला लेइयै पाकिस्तान च दवाइयें दे भाऽ उपरोतली बधदे जा करदे न। 2026 कोला पैह्लें 2 बारी एह कीमतां बधी चुकी दियां न। 2024 च एह बाधा पहले 50% ते 2025 च 30-40% दा बाधा कर दिता गया। एदे अलावा हुन 18% बाधू जनरल टैक्स लाइए दवाइयें दे भा गासा गी छुआ करदे न। पाकिस्तान कैमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन दे अध्यक्ष अब्दुल समद बुधानी हुंदा आखना है कि जिसले सरकार जरूरी दवाइयें दी कीमतें पर फैसला लैने च चिर लांदी है तां उसले इंपोर्टर इंदी सप्लाई घट करी दिंदे न, जिदे ने बाजारें च दवाइयें दी कमी होई जांदी है। कराची दे एक थोक व्यापारी ने दस्या है कि उत्थे हर 15-20 दिन दे बाद दवाइयें दे भा बदला करदे न। मशहूर मेडिसिन प्राइज एक्सपर्ट नूर मेहरुन दा आखना है कि दवाइयें दे नियमन ते नियंत्रण पर ढिल देने कारण इंदे पर निगरानी भी कमजोर होई है ते दवा कंपनियें भी मनमर्जी करना शुरू कर दित्ते दा है। टकोदा करिए उन्हें कंपनियें जिंदे कोई मते राइवल या हरीफ नहीं हैं। दरअसल पाकिस्तान पर इन्हें सारियें मुसीबतें दे दो बड़े कारण हैं। एक ते उत्थों दे हुक्मराने दा आम जनता गी लेइए बड़ा अलका ते गैर संजीदा रौं ते दूआ भारत गी लेइए उंदे मनै च कौड़तन ਤੇ ਇਹ ਦਵੈ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ

0: पहाड़ बना करदे न। ते हुन शहबाज शरीफ ते आसिम मुनीर होरें गी बी भारत कन्नै दुश्मनी भारी लग्गन लगी पेदी ऐ की जे पाकिस्तान दे अंदर गै इनें दौनें दे खलाफ आवाज उठा करदी ऐ। पाकिस्तान च दवाइयें दा काल पवा करदा ऐ, बिजन दवा लोकें दी जान जा करदी ऐ। जेड़ियां दवाइयां हैन उंदे भा आम आदमी दी पुज थमां बाहर न। आम लोकें गी लग्गा करदा ऐ कि पाकिस्तान दी इस बदहाली दा कारण भारत कन्नै खार खाने आली सोच ऐ। अज्ज पाकिस्तानी अपने हुक्मरानें गी दोष दिंदे होई मंग करा करदे न कि भारत कोला दवाइयां लैतियां जान, पर ओह्दा झूठा ऐम ते अपनियें करतूतें दी शर्मिंदगी उसी भारत कन्नै गल्ल करने शा रोका करदी ऐ। आखर केड़े मुंह कन्नै ओह् भारत कोला मदद मंगोग। तोआई अमरीका ईरान टेंशन ने पाकिस्तान दी कमजोर अर्थव्यवस्था गी होर मता खस्ताहाल बनाई दित्ता ऐ। तेल पेट्रोल दे भाएं च उछाल ने महंगाई च बड़ा मता बाद्दा कीता ऐ। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव इल्लै सदा थमां मता बने दा ऐ ते ओह्दे पर आयात बिल च बाद्दे ने अग्गे च घ्यो पाने दा कम्म कीता ऐ। ते इस अग्ग दे पांबड़ पाकिस्तान गी किस हद तगर फूकी टकांगन, एह् तां औने आला समां गै दस्सी सकदा ऐ। गल्ल गुआंढियें दी च अज्ज इन्ना गै, कल इक होर विशे पर गल्ल होग। जय हिंद।
1: हम आकाशवाणी भदोरा से आपसे मुखातिब हैं FM 101 MHz पर। समय शाम के 6:30 हुए हैं। आए सुनते हैं इतिहास फिल्म का नगमा अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और शंकर महादेवन की आवाज़ों में।

0: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
1: हजूर, आप अनंत बख्शी की लिखी तोता मैना की कहानी सुना रहे थे, सुनाइए ना।
0: अरे हाँ,

FM 101 MHz पर हम आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब हैं। समाइन आयब सुनते हैं लकी फिल्म का नगमा अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाज़ों में।

0: अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शेरबीन के समीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूदात हैं, 100 रोजे नशा मुक्त मुहिम अनंतनाग पहुंच गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने समाज के हर तबके से तआवुन की अपील की। बड़गाम कस्बे में पीडीपी की रैली, पीडीपी सदर ने सरकार को बनाया हदफ तनकीद। डोडा जिले में स्वच्छ भारत अभियान नाकामियों का शिकार।

0: उन्होंने कहा कि मनुष्यात और दहशतगर्दी एक ही सिक्के के दो रूख हैं और दोनों के खिलाफ इज्तमाई जंग नागुजीर है। वज़ीर के एलजी मौसूफ ने आज अनंतनाग में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत मुनक्किद पद यात्रा के सिलसिले में एक तकरीब से खिताब किया। उन्होंने अवाम बिलखसूस नौजवानों खवातीन असातिजा खिलाड़ियों और मजहबी रहनुमाओं से अपील की कि वो मनुष्यात के खिलाफ जारी इस मुहिम को एक अवामी तहरीक की शक्ल दें। एक रिपोर्ट के साथ अनंतनाग से एस तारिक।
1: दो रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत आज जिला अनंतनाग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में एक अजीम शान और तारीखी पद यात्रा का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत करके मंशियात के खिलाफ मुतिद होने का अजम दोहराया। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसियों और मुतलिका महकमों की जानिब से मुकम्मल और जामा इंतजाम किए गए थे, जबकि मार्च के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी अमल में लाए गए थे। तफसीलात के मुताबिक पद यात्रा और मरकजी तकरीब का आगाज सुबह के वक्त शहीद जमायू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज हनबल अंतनाग से हुआ, जहां मुनाकदा रिकॉर्ड तोड़ तकरीब में मुख्तलिफ तबकहा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने शिरकत की। नशा मुखालिफ बेदारी मुहिम के तहत निकाली गई इस पद यात्रा में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा, नौजवानों, समाजी तंजीमों, ताजर अंजुमनों, सरकारी मुलाजमीन, मजहबी इदारों, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में निकाली गई इस पद यात्रा में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग, डीआईजी साउथ कश्मीर, एसएसपी अनंतनाग समेत मुख्तलिफ मेंबराने मुकन लेना और एरा ऑफिसर भी शरीक थे। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंशियात के खिलाफ सख्त पैगाम देते हुए कहा कि वो इन माओं के दर्द को बखूबी महसूस करते हैं, जिन्होंने मंशियात की लानत के बाद अपने बच्चों की जिंदगी तबाह होते देखी है, जबकि कई खानदान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रक्त जिगर हमेशा के लिए खो दिए। उन्होंने कहा कि खौफ, समाजी दबाव और बदनामी के डर से मुतासर खानदान खामोशी थे, तब हुकूमत ने इस मुहिम के जरिए इनकी खामोशी तोड़ने और समाज को बेदार करने की संजीदा कोशिश की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अवाम खसूस नौजवानों के वालाना शिरकत इस बात का वाजह सबूत है कि लोग जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने के लिए संजीदा और पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से शुरू की गई नशा मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर में 100 रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान का आगाज किया गया, ताकि नौजवान नस्ल को मंशियात की वबा से महफूज रखा जा सके और एक सेहतमंद, बावेकार और खुशहाल मुआशरा तश्कील दिया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि अगर सिर्फ 100 दिनों में मुकम्मल तौर पर मंशियात से पाक मुआशरा कायम करना आसान नहीं, तब इस मुहिम के जरिए इस लानत के खात्मे की जानिब एक मजबूत और मोतर पेशरफ्त जरूर मुमकिन है। एलजी मौसूफ ने मंशियात के खिलाफ जारी बेदारी मुहिम और पुलिस की कार्रवाइयों को सराहते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस मंशियात फरोशों और इस नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई अंजाम दे रही है, ताकि इस नासूर को जड़ से खत्म किया जा सके।
2: इस मसले पर मोदी की वजह से अनेक नौजवान बच्चे बच्चियां अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाए और आज उनके माँ बाप के दिल में इस बात का गहरा दर्द लगता है कि मैं उनसे मिलता वो दर्द मैंने स्वयं अनेक माताओं और नौजवानों की आंखों में देखा है, महसूस किया है। 29 दिन पहले आवाम ने जम्मू के एमए स्टेडियम में उस खामोशी को तोड़ने का एक अभियान शुरू किया और आज ये धीरे धीरे कैसे जन आंदोलन का स्वरूप होता जा रहा है, जिसमें पहली बार हर नागरिक जब की चुनौती का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल रूप से तैयार हुआ। उन्हें जम्मू कश्मीर ने संकल्प दिया था कि ड्रग एडिक्शन के खिलाफ अंतिम प्रहार करना होगा। 3 मई को श्रीनगर में बड़ी संख्या में आए हुए नागरिकों ने एक स्वर में हलफ उठाया था कि पूरे जम्मू कश्मीर से ड्रग को पूरी तरह समाप्त करके ही हम चैन से बैठेंगे। आज मैं अनंतनाग में उस मां के बारे में आपसे बात करने आया जिसका बेटा ड्रग का शिकार हो गया। आज मैं आपको उस पिता की याद दिलाना चाहता हूं जो अपनी संतान के अधूरे ख्वाबों को अपने कंधों पर

आदाब। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, खबरनामा लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। अनंतनाग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में मनशियात मुखालिफ पद यात्रा का इनेकाद। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में नशा मुक्त अभियान के तहत इंतजामिया और पुलिस की कार्रवाइयां जारी। सरकार नौजवानों की राहत रसानी के लिए वादाबंद, नायब वजीर अला सुरेंद्र चौधरी। और सुवेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार के पहले वजीर अला की हैसियत से लिया हल्फ। अब पेश है खबरों की तफसील। आगाज में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान और इससे ताल्लुक से पुलिस कार्रवाइयों पर मुश्तमिल खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग जिले के को मनशियात से पाक करने के लिए समाज के सभी तबकों का ताउन तलब किया है। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसदुक रशीद ने खबर दी है कि एलजी ने आज अनंतनाग में बॉयज डिग्री कॉलेज से

0: कोहरगाम जिले में सियाहती शोबे की कई सहूलियात का इफ्तिताह किया। उन्होंने पांचन पथरी में नए तामीरशुदा पैसेंजर शेड के अलावा एक व्यू पॉइंट को भी आवाम के नाम वक्फ किया। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में नई उभरते हुए सियाहती मकामात को तरक्की देने की वादाबंद है और इस सिलसिले में मकामी और दीगर सयाहों के लिए जदीद सहूलियात को यकीनी बनाया जा रहा है। गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के एहतमाम से आज बड़गाम जिले के बदरन मागाम में समनबल नामी तीन रोजा अदबी मेले का आगाज हुआ। कल्चर की मरकजी वजारत के माली इश्तराक से मुनाकिद हुए इस मेले का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरखशां अंद्राबी ने किया। मेले की इब्तदाई रस्म की सदारत नामवर अदीब प्रोफेसर गुलशन मजीद ने की। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर रफीक मासूदी मेहमान एजाजी की हैसियत से इस मौके पर मौजूद थे। फोरम के जनरल सेक्रेटरी गुलशन बदरनी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया जबकि मारूफ कलमकार और ब्रॉडकास्टर डॉक्टर सतीश विमल ने कलीदी खुतबा पेश किया। तकरीब में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के डायरेक्टर और सरबरा तारिक राथिर भी मौजूद थे। अपने खिताब में डॉक्टर सईद दरखशांद्राबी ने कहा कि इस तरह की तकरीबात से आम लोगों में अपने तहजीब और तमदन के बारे में बेदारी पैदा होती है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबरा तारिक राथिर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
1: ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम है, उनके टाउन से ये मुनाकिद किया जा रहा है और ये प्रोग्राम अशद जरूरत है अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए। आलमी सतह तक ये कश्मीरी जुबान बोली जाती है और हमें उम्मीद है जो यहाँ से वाबस्ता जो अदीब है, स्कॉलर्स हैं, अब क्रिटिक्स जो हैं यहाँ पर, ये आलमी सतह तक पहुंचे हैं और यहाँ सारे पद्मश्री वगैरह ये कश्मीरी जुबान ने दिए हैं। और गुलशन कल्चरल फोरम एक ऐसा इदारा है जिससे यूथ से लेकर बुजुर्ग तक लोग वाबस्ता है।
0: मुख्तसर कहानियों और मजमून नवीसी पर मुश्तमिल प्रोग्राम की दूसरी नशस्त की सदारत मारूफ ड्रामा नवीस और ब्रॉडकास्टर निसार नसीम ने की। इस नशस्त में कई मुक्तदिर अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की। प्रोग्राम के अगराज मकासिद के बारे में फोरम के जनरल सेक्रेटरी गुलशन बदरनी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
2: इस प्लेटफॉर्म पे फनून लतीफा से वाबस्ता मुख्तलिफ लोग, जिसमें मुसव्विर भी, संतराज भी, मौसीकार और खुसूसी तौर कलमकार शोरा अदबा इस प्लेटफॉर्म पे जमा हुए। और जमा करने का मकसद ये है कि इसमें नवनिहाल शोरा भी शामिल हो जाएंगे और बुजुर्ग शोरा भी, जिनसे हम सीखते हैं और सिखाने वाले भी और सीखने वाले भी एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा होके अपने मामलात, अपने तखलीकात को शेयर करते हैं और देखते हैं कि मौजूदा ट्रेंड क्या है। इससे तहरीक भी मिल जाती है, उनको सीखने का मौका भी मिल जाता है सबों को, और एक वलवला, एक तहरीक, एक जोश पैदा हो जाता है उनमें। इस तरह ये जो फनून लतीफा से वाबस्ता लोग, उनकी इंस्पिरेशन बढ़ जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह ये सकाफती और तमद्दनी और अदबी मीरास जो हमारी है ये आगे बढ़ जाती है और ये जिंदा जावेद हो जाती है। ये है इसका मकसद, इसको आगे ले जाने के लिए जो हमारी कोशिश मकसद ही होता है इसके पीछे।
0: तकरीब के दौरान कल्चरल एक्टिविस्ट जीआर हसरत गढ़ा को साल 2024 और हकानी मेमोरियल ट्रस्ट के साबिक सरबरा मास्टर गुलाम मोहम्मद डार को साल 2025 के लिए गुलशन कल्चरल फोरम अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर फोरम का फरियाद नामी रिसाला भी जारी किया गया। फोरम के सदर सैयद बशीर कौसर ने शुक्रिया की तहरीक पेश की। बारामूला के सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल में आज यौम महजूर की मुनासिबत से एक तकरीब मुनक्द हुई। इस मौके पर स्कूली बच्चों और असातिजा ने शायरी कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूर की जिंदगी और उनके अदबी कारनामों पर रोशनी डाली। इस मौके पर शायरी कश्मीर के लिखे कुछ गीत भी पेश किए गए। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस नीलन प्रभात ने आज फौज की 15वीं कोर के जीओसी आईजीपी कश्मीर और विक्टर फोर्स के जीओसी के साथ एक मीटिंग में जनूबी कश्मीर में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन का जायजा लिया। कश्मीर जोन पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मीटिंग में पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स के दीगर आला अफसर भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के सभी डिग्री कॉलेजों में 4 साल अंडर ग्रेजुएट और 5 साल इंटीग्रेटेड पीजी कोर्सेज के लिए दाखिले का अमल आज से बाजाबता तौर शुरू हो गया है। इस बारे में जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर शेख एजाज बशीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
3: आज से हम एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमने सुबह 11 बजे लिंक jkadmissions.in लाइव कर दी है और अभी तक तकरीबन 3000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन की है। मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स रजिस्टर करें उस पे और ये प्रोसेस चलेगा अप टू 27th, तो उसके बाद हम पहला लिस्ट निकालेंगे, तो फिर दूसरा लिस्ट भी निकलेगा और फिर एक स्पॉट राउंड होगा। तो एडमिशन प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाया गया है इस बार। एक कॉमन पोर्टल के थ्रू 10+2 मेरिट के बेसिस पे हम एडमिशन

0: जैसे ही सिंस ये प्रोसेस ऑनलाइन है तो इसमें ग्रीवेंसेस रहती है, तो हमने ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म बनाया है इसमें। तो उसमें एक टिकटिंग का सिस्टम है, एक टिकट जनरेट होता है स्टूडेंट के लिए, तो वो टिकट बैक एंड पे उसका रेजोल्यूशन होगा और वो उसका क्लोजर होगा, वो सारा सिस्टम में इनबिल्ट है। और एक और बात है कि स्टूडेंट को अगर कोई भी चैलेंज आता है, किसी भी डीटीपी सेंटर में ना जाए, नियर बाई कॉलेज में जाए, वहां से उसको फैसिलिटेशन होगी और उसको बताया जाएगा कि क्या उसको करना है। इसमें कोई ऑफ डे नहीं है, जो पब्लिक हॉलीडेज है वही ऑफ है। जो पब्लिक हॉलीडे है उस दिन भी एडमिशन प्रोसेस हो सकता है, उस दिन भी स्टूडेंट पेमेंट भर सकता है, बाकी प्रोसेस ऑनलाइन है।
1: शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोरा में कल थेरानोस्टिक्स इन न्यूक्लियर मेडिसिन ए वे फॉरवर्ड के मौजू पर शुरू हुआ दो रोज़ा मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम आज इख्ताम पजीर हुआ। प्रोग्राम के इख्ताम पर इदारे के सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर को बताया।
2: कैंसर को रोकने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स देने हमने एक प्रिवेंटिव क्लिनिक शुरू किया रिसेंटली, लेकिन दूसरे साइड से हमें ये भी देखना है कि लो कॉस्ट इफेक्टिव डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट मॉडलिटीज भी हम शुरू करें। इसमें हमारा ज्यादा ध्यान देना है, रिसर्च करना है और पूरी कंट्री में ये सोचना है कैसे हम कैंसर का जो तेजी से बढ़ता है रोजाना, इसको कैसे कम करा जाएगा और कैसे लो कॉस्ट इफेक्टिव थेरेपीज हम इंट्रोड्यूस करें। दूसरी चीज ये है कि कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज, तो हमें लोगों को ये इंफॉर्मेशन देनी है, घर घर जाके ये इंफॉर्मेशन दे कि कैंसर के वजूहत क्या होते हैं, ताकि लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करेगा और कैंसर की ये जो तादाद है कम हो जाए।
1: सुवेंदु अधिकारी ने आज मगरबी बंगाल के वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया, वो रियासत में बीजेपी की क्यादत वाली सरकार के पहले सरबरा होंगे। मगरबी बंगाल के गवर्नर आरएन रवि ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया, उनके साथ पांच काबिनी वुजरा ने भी हलफ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर नितिन नबिन, कई मरकजी वुजरा और एनडीए हुकूमत वाली तमाम रियासतों के वुजराए आला हल बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए। अब पेश हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की सरगर्मियों से मुतलिक खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सियासी लीडर और मुजाहिद आजादी शेख मोहम्मद मंसूर की 36वीं बरसी पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की शनाख्त और भाईचारे के तहफ्फुज की कोशा हैं, वो आज श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी अहदेदारों और कारकुनों के साथ तबादला ख्याल कर रहे थे। जम्मू में आज जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा से चसोटी में बादल फटने से मुतासर अफराद का एक वक्त मुलाकी हुआ, जिन्होंने 2005 में आए तबाहकुन सैलाब के नतीजे में लापता 33 अफराद के हक में डेथ सर्टिफिकेट इजरा न करने के तनाजुर में उन्हें दरपेश मुश्किल के हवाले से एक मेमोरेंडम पेश किया। जम्मू में पार्टी तर्जमान रजनी सेठी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम आयद किया है कि वो यूटी में मनुष्यात की बिदत को खत्म करने में नाकाम हुई है। पार्टी की महिला मोर्चा ने आज त्रिकोटा नगर जम्मू में कायम पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी मामला से मुतलिक एक जायजा मीटिंग मुनक्कद की। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश सदर सत शर्मा ने बीजेपी के प्रोग्रामों और पॉलिसियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए महिला मोर्चा की सताइश की। इसी बीच महिला मोर्चा की सदर एडवोकेट नेहा महाजन ने आज जम्मू में एक नुमाइश का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद जनाना कारखानादारों की हौसला अफजाई करना है। इधर जवाहरनगर श्रीनगर में आज बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल की क्यादत में मगरबी बंगाल के नए वजीर आला की हलफबरदारी की तकरीब का जश्न मनाया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर और गांधरबल जिले के पंचायत इलेक्शन इंचार्ज मोहम्मद अमीन शाह ने आज श्रीनगर में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के तरक्याती मामलों के अलावा सियाहत और रोजगार के मौकों के मुतालिक उनके साथ तबादला ख्याल किया। पीडीपी के सीनियर लीडर और एमएलए पुलवामा वहीदुररहमान परा ने इल्जाम आयद किया है कि जिला के लिए अमृत प्रोग्राम के दूसरे मरहल के तहत 18 करोड़ रुपए मालियत के मंजूर किए गए पीने के पानी के प्रोजेक्ट को पसपुश डाल दिया गया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के लिए गुज़श्ता बरस लागत के रकम की पहली किस्त वागुजार की गई, तहम अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीद पर्रा ने दावा किया है कि डीपीआर को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को सौंपे जाने के बावजूद भी इसको प्लान में से निकाल दिया गया है। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से इस मामले की जानिब तवज्जा देने की अपील की है, जो पुलवामा के आवाम के लिए राहत का जरिया बन सकता है। जम्मू रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भीम सैन तूती ने पुलिस अफसरों की एक मीटिंग में खित्ते की मजमूई सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। आईजीपी ने अमन अमान को बरकरार रखने और सरहदी इलाकों में चौकसी बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों और फोर्सेज के माबेन करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। दूरदर्शन

0: सेक्शन के अंदर श्रीनगर के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रफीक मसूदी के चाचा गुलाम हसन मसूदी इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल पर रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन और दीगर कई तंजीमों ने अफसोस का इजहार करते हुए डॉक्टर रफीक मसूदी के साथ हमदर्दी जाहिर की है। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जन्म जयंती है। इस सिलसिले में मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक्कद हुए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर रविंद्रनाथ टैगोर की अदबी और सामाजिक खिदमत को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जन्म जयंती पर खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में एलजी ने उन्हें एक अजीम दानिश्वर, शायर और मुफक्किर करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो रियासत में 15 अरब 35 करोड़ रुपए मालियत के कलीदी रेलवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करके उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी NALSA के एहतमाम से आज पूरे मुल्क में रवां साल की दूसरी कौमी लोक अदालतों का एहतमाम हुआ। जम्मू कश्मीर में भी यूटी के चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्ली की निगरानी में लोक अदालतें मुनाकिद हुई। जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में जेंड के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एहतमाम से मुनाकिदा लोक अदालत का इफ्तिताह अथॉरिटी के सरपरस्त आला जस्टिस संजीव कुमार ने किया। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.7 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.1 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:34 और ग्रोब आफ्ताब शाम 7:22 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
1: सामी नादाब, आज का तबसरा लेकर मैं गुलजार अमीन। हमारे मुल्क में सबसे अहम इदारा हमारा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में जिस सियासी पार्टी की अक्सरियत होती है उसी की ही हुकूमत होती है। इस तरह से हुकूमत यानी गवर्नेंस की जिम्मेदारी इसी सियासी पार्टी की होती है। मगर हमारे इस पार्लियामेंट में एक और निज़ाम है जिसके जरिए पार्लियामेंट बराह रास्त अपने मेंबरान से अवामी मसाइल, उनके लिए शुरू की गई स्कीमों, उनके समाजी और माशी हालात के बारे में आगाही हासिल करती है। और ये निज़ाम पार्लियामानी कमेटियों का है। ये कमेटियां हमारे मुल्क में जमहूरी तर्ज हुकूमत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। ये कमेटियां मिनी पार्लियामेंट के तौर पर काम करती हैं और कानून साजी, मालियाती और इंतजामी उमूर की तफसीली जांच में मदद करती हैं। गवर्नर्स के बारे में फीडबैक हासिल करने, नीज किसी खत्ते और अवामन्नास की राय हासिल करने के लिए इन कमेटियों के मेंबरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हैं। माली उमूर से मुतल्लिक कमेटी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान इस कमेटी ने यहाँ की माली और माशी मसाइल का जायजा लिया। वजीर अला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में कमेटी मेंबरान से सियाहत, तवानाई और इलाकाई तरक्याती तरजीहात पर गुफ्तगू की। तवानाई शोबे के लिए इन मेंबरान ने बुनियादी ढांचे की मजबूती और जम्मू कश्मीर में काबिल तजदीद तवानाई में मुमकिन तरक्की के बारे में बातचीत की। और अवामी नुमाइंदों के साथ अपने इजलास में इस कमेटी ने माशी तरक्की को और ज्यादा मुस्तहकम करने, दही राबता कनेक्टिविटी और हार्टिकल्चर और ज़राअत में मजीद इमदाद फराहम करने पर गौर खोज किया। इस तरह से कमेटी मेंबरान ने बराह रास्त जम्मू कश्मीर के मुआशी मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। इससे कबल घरेलू उमूर से मुतल्लिक पार्लियामानी कमेटी और कानून इंसाफ से मुतल्लिक पार्लियामानी कमेटी ने भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया और सरकारी व अवामी वफूद से बातचीत की और फीडबैक हासिल किया। उम्मीद की जा सकती है कि माली उमूर से मुतल्लिक ये कमेटी जम्मू कश्मीर की माली जरूरियात को मुल्क के बड़े ऐवान तक पहुंचाएगी ताकि दीगर मसाइल के अजाले के साथ साथ अवामी फलाह बहबूद से जुड़े मसाइल भी हल हो सकें। तबसरा खत्म हुआ। शब बखैर।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: वादी की आवाज़।

पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

जी दोस्तों, प्रोग्राम के नाम अगली सौगात फिल्म कालिया से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, और सुनने के ख्वाहिशमंद है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगीश पुरी, टिविंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, बोरसरा नीला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशी साहू। अजीम बकार ने मेल भेजा है इंदिरा चौक दिल्ली से। आपके साथ है माहिरा अजीम और नगमा अजीम। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। मजनू का टीला दिल्ली से, ये मेल हमें मौसूल हुआ है कमल बलूजा, मधु बलूजा और सागर की जानिब से। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने मेल भेजा है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक रॉय, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, केथल और डॉक्टर अमनदीप, आपने हमें मेल भेजा है सेक्टर 66 मोहाली चंडीगढ़ से। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टू बजाज। और तेलंगाना बुंगेर से ये मेल हमें मौसूल हुआ है मोहम्मद बुरहानुद्दीन और मोहम्मद यूसुफुद्दीन की जानिब से। सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म कालिया से नगमा, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज, और वादी की आवाज के आज के शुमारे में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद के हुए नगमे। दोस्तों, आप पेश है फिल्म गीत से नगमा, आवाज है लता मंगेशकर की, और सुनना चाहते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी शिवानिया और अनुराधा गोस्वामी, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार दिवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम देवगन और कृष्णा देवगन, गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से ये मेल हमें मौसूल हुआ है स्वरण सिंह गिल की जानिब से। आपके साथ हैं दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया। आपने हमें मेल भेजा है बागपत उत्तर प्रदेश से। दत्रेंगी बाटापारा छत्तीसगढ़ से हिरामन वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र वर्मा और अनोखे लाल वर्मा ने मेल भेजा है। बुल्डाना वारशिंग महाराष्ट्र से अमोल मालकर ने मेल भेजा है। आपके साथ हैं शोभताई मनकार, दीपाली और शिलोक कुमार। इस्लामपुरा महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, साधना, सुमेघ और केथल हरियाणा से ये मेल आया है जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा की जानिब से। पेश है आप सभी दोस्तों की फरमाइश पर फिल्म गीत से नगमा लता मंगेशकर की आवाज में।

बनीपटी मधुबनी बिहार से मेल हमें मौसूल हुआ है अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, बाविया कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी की जानिब से। आपने मुकेश की आवाज में नगमा सुनना चाहा है, फिल्म का नाम है कन्हैया। इसी नगमे को आप सब दोस्त भी सुनना चाहते हैं। आप हैं नागपुर महाराष्ट्र से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव और पावन राजे, विरिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा पंजाब से अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, पवनीत और विक्रमजीत, नागजुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र खत्री, बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी और पायल जोशी जी, शाहजी बोड़खे ने मेल भेजा है हिंगोली महाराष्ट्र से। आपके साथ हैं श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान, उत्तम जामदाड़े, सुरफा कंगन से लतीफ अहमद रैना, खालिदा जी, रऊफ शेख, साहिल तनवीर और जान मोहम्मद रेशी और पनियारी सोनावारी से। ये पोस्ट कार्ड हमें मौसूल हुआ है मोहम्मद अशरफ डार, जान मोहम्मद डार, मंजूर अहमद डार और गुलाम अहमद मटानी की जानिब से। सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म कन्हैया से नगमा मुकेश की आवाज में।

0: कल रात की तौबा।
1: जी दोस्तों, प्रोग्राम के नाम अगली और आखिरी फरमाइश आप सभी दोस्तों की पसंद पर। आप हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरिजू और गुड्डू, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चींपा, कपिल चींपा और पूजा परिहार, आर्यानगर कोहका बिल्लई से उत्तम सिंह जंदेल, मोरस जंदेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी, दमदा ग्राम सुखरी कला से अमित, शकुन, आरुषि, शिखा, आदित्य और अंजलि जंदेल, ग्राम रजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार, आदर्श, सार्थक, अलौकिक

0: इसके साथ ही अब आज के प्रोग्राम का जो वक्त है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।
1: वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

FM 101 MHz पर हम आकाशवाणी बदरवा से आपसे मुखातिब हैं। समय रात के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं डूमराम की आवाज़ में सराज़ गीत।

से मुखातिब है। समय कुछ ही देर में यानी ठीक 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर उर्दू में खबरें, 9 बजकर आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। समय रिले का इंतज़ार कीजिए।

नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांच विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने

0: तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ पांच मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग

0: कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा।

0: जहां प्रत्येक को पांच पांच पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष, विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात पांचवें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari takes oath as first BJP Chief Minister of West Bengal. 5 MLAs also sworn in as cabinet ministers. TVK Chief C. Joseph Vijay stakes claim to form government in Tamil Nadu with support of Congress, VCK, IUML and left parties. Set to take oath as Chief Minister tomorrow. India conducts successful flight trial of advanced variant of Agni missile with MIRV system. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects during his day-long visit to

0: संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज टू में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल में बीजेपी कानून साज पार्टी के लीडर शुभेंदु अधिकारी ने आज रियासत के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। इस तरह उन्होंने रियासत में पहली बीजेपी सरकार की कमान संभाल ली है। गवर्नर आर एन रवि ने जनाब शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक शानदार तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। वजीर आला के हमरा पांच काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक किर्तानिया, निशित प्रमाणिक और क्षुदीराम टूडू शामिल हैं। हलफबरदारी की तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, एनडीए और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वजराए आला, भारतीय जनता पार्टी के सदर नितिन नबीन और पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं जबकि तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली। तृणमूल कांग्रेस रियासत में पिछले 15 साल से इख्तदार में थी। इधर मगरबी बंगाल कानूनसाज असेंबली के नए मुंतखब अरकान विधानसभा में 13 मई को हलफ लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मैदान में पीडब्ल्यू टेंट में चीफ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी और रियासत के दीगर ओहदेदारान के साथ मीटिंग की। इस दौरान रियासती हुकूमत के सेक्रेटेरिएट की जगह फिर बदलने के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में तजदीद का काम जारी है, जिसे इस विरासती मकाम से 2011 में ममता बनर्जी के इख्तदार में आने के बाद नबन्ना मुंतकिल कर दिया गया था। बीजेपी की नई हुकूमत राइटर्स बिल्डिंग से काम करेगी, जो एक विरासती मकाम है। एक अहम वाकये के तहत आज एसआईआर के लिए मगरबी बंगाल के खसूसी मुशाहिद रिटायर्ड आईएएस अफसर सुब्राता गुप्ता को मगरबी बंगाल के वजीर आला का मुशीर और 2017 बैच के आईएएस अफसर शांतनु बाला को उनका पर्सनल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तमिलनाडु में तमिल गवित्री कड़गम टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में लोक भवन में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर से मुलाकात की और 120 सरकारी असेंबली की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे नामानिगार ने बताया कि रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर कल सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में जोसेफ विजय और उनकी काबीना को हलफ दिलाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: टीवी के पार्टी के लीडर जोसेफ विजय ने सरकार बनाने के लिए आज फिर गवर्नर से मुलाकात की। नतीजे आने के बाद पिछले 6 दिन में वो चौथी मरतबा अक्सरियत हासिल होने के मामले पर गवर्नर से मिलने गए। गवर्नर मौसूफ ने इससे पहले उनसे मुलाकात का प्रोग्राम मंसूख कर दिया था क्योंकि उन्हें केरलम जाना था, लेकिन बाद में उन्होंने टीवी के पार्टी के लीडर को फिर मुझसे मुलाकात के लिए मदऊ किया। अब पार्टी को मजमूई तौर पर 120 सरकारी असेंबली की हिमायत हासिल है। डीएमके पार्टी से इत्तेहाद से अलीहदा होकर कांग्रेस ने टीवी के पार्टी की हिमायत करने का ऐलान किया है। चेन्नई से जुआई की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: हालिया असेंबली इंतखाबात में टीवी के पार्टी 108 सीटें जीतकर वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 234 रुकनी तमिलनाडु असेंबली में अक्सरियत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। पार्टी ने कहा है कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ही पार्टियों ने सरकार की तश्कील के लिए अपनी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। जोसेफ विजय दो असेंबली हलकों से चुनाव जीते थे, इसलिए उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। इस तरह टीवी के पार्टी के अरकान की तादाद 107 रह जाएगी। हिमायत करने वाली पार्टियों के अरकान असेंबली की मजमूई तादाद 13 हो गई है। इनमें कांग्रेस के 5 अरकान जबकि सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल के 2-2 अरकान असेंबली शामिल हैं। भारत ने ओडिशा में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जजीरे से एमआईआरवी निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दिफा ने कहा कि कई तरह के पेलोड्स के साथ इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया। इसमें बहर हिंद के खित्ते में एक वसी जोग्राफियाई इलाके में फैले हुए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एमआईआरवी सलाहियत वाले अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश पर दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम डीआरडीओ, भारतीय फौज और सनद की सताइश की। जनाब

सिंह ने कहा कि इससे बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ मुल्क की दिफाई तैयारी में नुमाया इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी हैदराबाद जाएंगे, जहां वो तेलंगाना में तकरीबन 9,400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मोदी गुजरात का भी दो रोजा दौरा करेंगे, जो कल से ही शुरू होगा। पीर के रोज वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर के अहिया की 75वीं सालगिरह के मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले एनडीए सरकार की जानिब से शुरू की गई समाजी सिक्योरिटी और पेंशन की अहम स्कीमों के असरात को उजागर किया है। इनमें पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि इन इकदामात से मुल्क के अवाम के लिए अजमत, वकार, यकीन दहानी और माली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद की अक्कासी होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना से सबसे निचली सतह पर लोगों की जिंदगी पर मुस्बत असर पड़ा है और सामाजिक सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क मजबूत हुआ है। हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड्स 2025 के फातिहीन का ऐलान कर दिया है और इस एजाज के लिए मुल्क भर से 42 पंचायतों को मुंतखब किया गया है। पंचायती राज की वजारत ने मुतला किया है कि अवार्ड पेश किए जाने की तकरीब आइंदा माह की 3 तारीख को नई दिल्ली में होगी। वजारत के मुताबिक कर्नाटक को सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं और उसकी 6 पंचायतों को मुंतखब किया गया है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की 5-5 पंचायतें चुनी गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वापस्ता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल ईडी ने इस केस के सिलसिले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई अंजाम दी थी। काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम के 2002 के एक्ट की फौजदारी दफात के तहत ये कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने बताया कि इस केस का ताल्लुक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद के जरिए मुबैना तौर पर बड़े पैमाने की मनी लॉन्ड्रिंग और दुबई से नाजायज रकूमात की भारत मुंतकली से है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए 3 केसों के सिलसिले में मुंबई में 17 मकामात पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दी। सीबीआई के मुताबिक तलाशी की यह कार्रवाई इन कंपनियों के डायरेक्टरों के रिहायशी ठिकानों के साथ साथ उन जैली कंपनियों के दफातर में की गई जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक फंड्स को मुंतकिल करने के लिए किया गया था। एजेंसी ने कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में काबिल एतराज दस्तावेजात कब्जे में ली गई हैं। सीबीआई ने कहा कि गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान सरकारी मिल्कियत के मुख्तलिफ बैंकों और एलआईसी की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायतों की बुनियाद पर अनिल अंबानी की सरबराही वाले रिलायंस ग्रुप के खिलाफ 7 केस दर्ज किए गए। हजारों करोड़ रुपए की मुबैना धोखाधही के सिलसिले में ये शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। मणिपुर में कामजोंग जिले के नामली से जिस खातून को कुकी नेशनल आर्मी बर्मा और विलेज वॉलेंटियर्स ईस्टर्न जोन की जानिब से जुमेरात को अगवा किया गया था, उसे आसाम राइफल्स की मरबूत कोशिशों के सबब आज जेड चुरु गांव से रिहा कर दिया गया। नीम फौजी दस्ते ने खुफिया और दीगर एजेंसियों के साथ तालमेल में अगवाशुदा खातून के बचाव की कोशिश की और इस खातून को जेड चुरु गांव के नजदीक सुपुर्द कर दिया गया। दिफा के वजीर ममलिकत संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में एआईओएस मुसल्ला अफवाज से मुतालिक ऑफ्थेल्मोलॉजी अपडेट 2026 का इफ्तिताह किया। इस दो रोजा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आंखों के अमराज की कुल हिंद अंजुमन के साथ इश्तराक में नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के महकमाए अमराज चश्म की जानिब से किया जा रहा है। इसमें भारत और बैरून मुल्क से फौज के आंखों के अमराज के माहरीन और दीगर सिविलियन माहरीन आंखों के अमराज के सिलसिले में तहकीक, इख्तरा और तिब्बी महारत के सिलसिले में एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर यज्ञ हो रहे हैं।
अमेरिका ने कहा है कि वो मुजवजा 14 निकाती फ्रेमवर्क पर ईरान के बाजाब्ता जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसका मकसद इलाकाई महाजराई

0: को फैलने से रोकना है। मगरबी एशिया के खत्ते में फौजी और सियासी कशीदगी का सिलसिला भी जारी है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका सिफारतकारी में मसरूफ है, और उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह इशारा दिया है कि ईरान के जवाब से मुजाकरात के अगले मरहले का तायुन हो सकता है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई पर नुक्ताचीनी की है और अमरीका पर इल्जाम लगाया है कि वो कशीदगी बढ़ाकर सिफारती कोशिशों को कमजोर कर रहा है। आब नाए हुरमुज और उसके अतराफ ताज़ा वाकयात के पस मंजर में ये बयानात सामने आए हैं, जिसमें ईरान और अमरीकी फोर्सेज के दरमियान मुबैना बहरी टकराव भी शामिल है। केरल में मौसम गर्मा की बारिश में तेजी आ गई है और भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 5 दिनों तक कहीं कहीं शदीद बारिश और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। आईएमडी ने आज 9 अजला में येलो अलर्ट जारी किया है और 7 अजला में कल भी अलर्ट नाफिज रहेगा। खराब मौसम के सबब केरलम में और लक्षद्वीप में माहीगीरों को समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। ताहम कर्नाटक के साहिल के नजदीक माहीगीरी के सिलसिले में कोई पाबंदी नाफिज नहीं की गई है। 19वीं मुंबई बैन अलावामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मंदूबीन के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। ये फिल्म फेस्टिवल 15 से 21 जून तक मुंबई में होगा। जनूबी एशिया का ये अहम फेस्टिवल दस्तावेजी, मुख्तसर फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए वक्फ है। इसके लिए मंदूबीन 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके फेस्टिवल के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपना इंदिराज करा सकते हैं, जबकि तलबा को दस्तावेजात की तस्दीक के साथ इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगी। आज चेन्नई के शंघाई में तीरंदाजी आलमी कप 2026 के दूसरे मरहले के तहत मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता। महाराष्ट्र के 25 साल तीरंदाज ने डेनमार्क के सरकर्दा खिलाड़ी और कोच मार्टिन डेम्सबो को 144-147 के स्कोर से हराकर कांसे का तमगा जीता और भारत को जारी टूर्नामेंट में पहला तमगा दिलाया। गुजश्ता बरस भारत ने शंघाई में 5 कंपाउंड तमगे जीते थे। आईपीएल में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 55 रन स्कोर किए। इससे कबल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की कुश्ती फेडरेशन ने विनेश फोगाट को डिसिप्लिन की पाबंदी न करने और डोपिंग मुखालिफ जाब्तों की खिलाफवर्जी के इल्जाम के सिलसिले में आज वजह बताओ नोटिस जारी किया है। 15 सफहात पर मुश्तमिल नोटिस में WFI ने कहा कि विनेश इस साल जून तक घरेलू मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। शोभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 5 अरकान असेंबली ने भी काबीना वजीर के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: FM 101 MHz पर हम आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब हैं। समय रात के 9:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं दोस्ताना फिल्म का नगमा किशोर कुमार की आवाज़ में।

हम FM 101 MHz पर आकाशवाणी भद्रवाह से आपसे मुखातिब हैं। रात के ठीक 10 बजे हैं। अब हमारी आज की मजलिस यहीं पर अपने इख्तिताम पर पहुंचती है। कल सुबह ठीक 7:51 पर आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर। जय हिंद।